ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 7, तदनुसार 28 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। शुभ प्रभात, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में PM फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को

0: विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Ministry of External Affairs has issued an advisory to Indian citizens undertaking the Kailash Mansarovar Yatra through tours organized by private tour operators. In a statement, the ministry said it is in receipt of several requests for help and assistance from Indian citizens stuck in Nepal while undertaking Kailash Mansarovar Yatra without the required entry permit and visas for China. It said citizens are advised not to commence their journey from India until all required travel documents have been obtained for undertaking the complete journey. Union Ministers of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel has said that India had made significant progress in healthcare over the past 12 years and is working toward the broader goal of universal health coverage, ensuring accessible, affordable and quality healthcare for every citizen. Speaking at the 9th edition of the Doctors' Day Conclave of a private media channel program, Ms. Patel highlighted Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana as one of the world's largest health assurance programs covering around 62 crore people and said it is helping families access treatment with financial protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta warned that coaching centres which fail to comply with mandatory safety norms will no longer be

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण का।

कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुनवाते हैं ये भक्ति रचना हरिओम शरण के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में हरिओम शरण को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना, और इसी रचना के साथ ही आज का कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। मृणालिनी अखौरी को प्रातः 7 का समय होगा जोहार चाईबासा कार्यक्रम का। प्रातः 8 समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार प्रातः 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रातः 8:40 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक में, हो लोकगीत कलाकार जगबंधु बारी एवं साथियों के स्वरों में। प्रातः 9 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। प्रातः 9:30 पर समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। प्रातः 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। प्रातः 10:55 पर आप सुनेंगे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3 आप सुनेंगे न्यूज़ इंडिया समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 3:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 4 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या 5 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जय भारती फौजी भाइयों को संबोधित। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। संध्या 7 और उसके बाद जिले में आज कल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।
रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर, और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कलाकार हैं मृणालिनी अखौरी।

श्रोताओं, इसी संगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म है उमराव जान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म उपहार का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनवाते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर के स्वरों में फिल्म वीर जारा का ये गाना। बोल जावेद अख्तर के और संगीत मदन मोहन का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म उसने कहा था का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और तलत महमूद की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब ओडा वापस को रुआड़ा धारे आम बोले रुआड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये
6: मंगलोर गाँव आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
8: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता तमसा भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरे में ना ये यापा मेरे तपा मेरे ये वाह बेटा निका
9: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दो डर कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तो किये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुलम गई अंदर जाए तेरे काका बुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेता ना लेंगे सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम तेरी ना मिल आपी लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म उपकार का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रांति का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, बोल संतोष आनंद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवाते हैं फिल्म यस बॉस का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुछ ना कहो का ये शीर्षक गीत आवाज़ सान और साधना सरगम की। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं फिल्म लावारिस का ये गीत आवाज़ मन्ना डे और साथियों की, बोल अनजान के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लावारिस का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गई। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया।

0: नहीं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली NCR तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ, लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स पैट्रिक हर्मिनी टुडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,63,73 लाख लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 61 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि, रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि झारखंड में प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 39.82 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
1: झारखंड में 39,82,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर, जिस तरह झारखंड में हमारी सरकार नहीं है लेकिन यहाँ हमारी सोरेन जी की तो सरकार है और उनको यहाँ बहुमत मिला, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो झारखंड अलग बनाने के लिए शिबु सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भी नया झारखंड बना है या ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये सभी जाति वर्गों में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है।
0: राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत राज्य के 61 लाख से अधिक और रांची में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। वहीं देवघर जिले में भी पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने जसीडीह, देवघर और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर्स की संख्या बढ़ाने, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने तथा सीसीटीवी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने संभावित भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी क्राउड मैनेजमेंट

0: प्लान तैयार करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में भाजपा महानगर ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
1: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना की हत्या करने का अपराध था। एक ऐसा अपराध जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें और फिर किसी भी शासक को इस देश में ऐसा करने की हिम्मत न हो, इस दृष्टि से आपातकाल के काला अध्याय का स्मरण करने का ये कार्यक्रम आयोजित है।
0: धनबाद जिले में अवैध खनन और नदियों के किनारे ओवर बर्डन यानी ओबी डंपिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने संयुक्त टीम को पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
2: दो तीन नदियां हैं जिस पर लगातार शिकायतें आ रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वो सब नदियों का थरो इंस्पेक्शन के लिए एक टीम का गठन किया गया है कि अलोंग द लाइंस ऑफ द रिवर किसी भी तरह की ओबी डंपिंग या माइनिंग किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, और ऐसा होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई संबंधित एरिया के हो।
0: केंद्र प्रायोजित स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर 1 जुलाई को राज्य स्तरीय समिति की बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में पुलिस मुख्यालय से ADGP, IG अभियान सह नोडल पदाधिकारी LWEUE, IG प्रोविजन, वित्त विभाग के सचिव और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। झारखंड में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 20 जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून से 1 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। फिलहाल राज्य में सामान्य से 62% कम वर्षा दर्ज की गई है। रांची के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की बालिका फुटबॉल टीम ने 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की कांके प्रखंड स्तरीय अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल, अनुशासित प्रदर्शन और बेहतरीन टीम भावना का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में आत्मविश्वास और उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अटकलों पर विराम, चंपत राय और मिश्र का ट्रस्ट से इस्तीफा। हिंदुस्तान ने लिखा है, चंपत राय समेत 2 ने पद छोड़ा। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट के बाद महाराष्ट्र TET का भी पेपर लीक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान का बहरीन में अमेरिका नौसेना बेस पर ड्रोन हमला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 61,00,000 से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि,

रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे हो लोकगीत कलाकार जगबंधु बारी एवं साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी की महक में हो लोकगीत। कलाकार जगबंधु बारी और उनके साथियों की आवाज़ों में

श्रोताओं, इसी हो लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आज की विविधा में मैं हूँ आपके साथ अंजू रानी। इन दिनों मौसम कई तरह के रंग दिखा रहा है, कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी तो कभी अचानक बारिश। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और व्यवसाय की सुरक्षा के लिए सही बीमा पॉलिसी चुनने और अपनी मौजूदा पॉलिसियों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बीमा पॉलिसी और बीमा क्या है, जागरूकता हम किस तरह से फैलाएं, लोगों को किस तरह से जागरूक करें, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे एक अभिकर्ता से। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सही राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे रखा गया। हम बोले रुड़ तब में अल परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगल रहा का गांव बरगरा आरकी थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का ये जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पा ली वह चलते एकदम हमारे पूरा एकदम अखन तो ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।

0: ಜೊತೆ ಸುಸನ್ ಇವಾಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಅಪಿಲ್ಲದನ್ನ.
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं. हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें. इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं.
2: आज के कार्यक्रम में हम एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, तो आइए जाने उनसे परिचय. नमस्कार
3: जी. नमस्कार मैडम.
2: आपका परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए.
3: जी, मैं कुलेश नायक बंजारी प्रखंड से बिलोंग करता हूँ.
2: जी,
3: वर्तमान में मैं LIC का करता हूँ, LIC ऑफ इंडिया पे काम करता हूँ.
2: चलिए, धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए. सर, आप LIC में काम करते हैं, अभिकर्ता हैं आप.
3: जी
2: सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये एक रेडियो के माध्यम से, संचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि ये बीमा क्या है. तो मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीमा है क्या.
3: जी मैडम, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका.
2: जी,
3: मेरे नज़र में बीमा जो है वो केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है.
2: जी.
3: बल्कि हमारे परिवार की सुरक्षा और भविष्य की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है. आपको तो पता ही है कि ये जो हम लोग का जीवन है, जो मनुष्य के जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: हमारे जो जीवन है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है.
2: जी.
3: कभी भी दुर्घटना, बीमारी या किसी अन्य संकट की स्थिति आ सकती है. ये हमारे हाथ में नहीं आता.
2: बिल्कुल.
3: तो उसी के लिए जो बीमा अगर हम करते हैं, तो बीमा हमारे परिवार को हमारे नहीं रहने पे आर्थिक सहारा प्रदान करता है, और जो है ना परिवार को कठिन समय में मजबूती देता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: आपको पता ही है कि एक है कि मुसीबत के समय में कोई किसी का नहीं रहता है. तो हमारे ये जो LIC जो है ना, भारतीय जीवन निगम ही एक ऐसी संस्था है. आपने पता होगा पिछले, अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड को हम लोग ध्यान दें, कि कोरोना काल में सबसे अधिक क्लेम सेटलमेंट जो है ये LIC के माध्यम से हुआ था. इवन ऐसे कि व्यक्ति का मृत्यु हो गई और उसके पश्चात तत्काल, माने बिना कोई एविडेंस का, बिना कोई प्रूफ का, उनको भुगतान कर दिया गया. तो ये हमारे LIC की बहुत बड़ी बात है.
2: सर, आपके कहने का मतलब है, अगर हम बीमा का अर्थ समझें, तो आपने जो शुरू में बताया उस हिसाब से मैं खुद समझना चाह रही हूँ कि बीमा को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ आपका जो संपत्ति है या फिर आपका जो पैसा एक रखने के साथ साथ, ये सिर्फ पैसा को छुपाना या पैसा को जमा करने का तरीका नहीं है. ये आपके बाद या फिर आप रहे या ना रहे, आपका परिवार इससे सुरक्षित रहेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा. आपके कहने का अर्थ यही है, अगर मैं समझूं तो.
3: जी जी.
2: तो यही चीज लोगों को समझ में आना चाहिए कि बीमा है क्या.
3: जी.
2: और बीमा हम क्यों कराएं.
3: जी.
2: है ना.
3: जी.
2: तो अगर ये सवाल मैं सर आपसे पूछूं कि बीमा हमें क्यों कराना चाहिए.
3: ऐसा है कि आज के जमाने में हमारी जो जीवन है वो सारा EMI पे डिपेंड कर रहा है.
2: बिल्कुल बात सही है सर.
3: जी. कि आप अपनी भौतिक सुख के लिए, हर व्यक्ति, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: इसमें क्या होता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ EMI करके चला रहा है. लेकिन इतनी बड़ी जो चीज़ है, हम अगर परिवार के मुखिया हैं तो हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार की जिम्मेदारी है. घर का राशन कैसे चलेगा.
2: जी, जी, जी.
3: बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, उनकी मैरिज पर्पस

0: और सबसे बड़ी बात है कि हमारे LIC में आप अगर पैसा जमा करते हैं तो ID के अनुसार जो है ना टैक्स फ्री पैसा आपको मिलेगा। आपको जितने भी पैसा पाएंगे और टैक्स फ्री रहेंगे तो इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है और पूरा पूरी पैसा जो है ना आपके हाथ पे आ जाएगी। तो समय पे आपके जो अभी जो इच्छा जो मन में हर एक व्यक्ति एक सपना रहता है मैडम, तो वो सपनों को वो व्यक्ति जीते जी पूरा करेंगे, अन्यथा कि अगर किसी तरह का उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो उस हालत पे LIC जो है ना एक जिम्मेवारी लेती है। कि हमारे एक बहुत बढ़िया स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी जी।
0: तो ये चीज़ जो होता है कि अगर आप रहें तो आपके साथ साथ LIC एक परिवार की तरह चल रही है, आपकी सुविधा असुविधाओं को देख के चल रही है। अगर इनकेस कुछ अगर आप ना रहें, अनफॉर्चुनेट अगर किसी तरह की कोई परेशानी समस्या आ जाती है तो वो सारा अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज उस तरह का आपको सुविधा प्रदान करने का उसमें सुविधा है। तो व्यक्ति अपने जरूरत के अनुसार इसको ले सकता है,
1: जरूरत के अनुसार ले सकता है। उस पर जो पैसा लगता है सर, साधारण भाषा में कहा जाए जितना पैसा जमा करना है, किस हिसाब से हमको लेना चाहिए, कितने वर्षों के लिए लेना चाहिए, ये तो आप लोग उनको जानकारी दे देते हैं, है ना। और हमारे क्षेत्र के हिसाब से मैं बात करूं, जानना चाहूं
0: जी,
1: कि जो रोज कमाता है रोज खाता है
0: जी,
1: क्या ऐसे लोग LIC ले सकते हैं सर?
0: जी जरूर मैडम, ले सकते हैं। क्योंकि LIC का कहना है कि किसी गरीब या अमीर के वाले कोई प्रावधान नहीं है, LIC के लिए सभी लोग बराबर हैं। और दूसरी चीज है कौन कितना कमा रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका बजट क्या है, तो यहाँ पर हर वर्ग के बजट के अनुसार अलग अलग पॉलिसियाँ मौजूद है। तो व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार आय के अनुसार इसको ले सकता
1: है। रोज का जो सर आय है
0: जी,
1: एक अगर हम मजदूर की बात करें जो सरकारी नौकरी करते हैं
0: जी,
1: वो कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ता है LIC लेने का या पॉलिसी लेने का, है ना
0: जी जी।
1: वो टैक्स के लिए करते हैं, आप लोग किस तरह से उनको प्रोवाइड कराते हैं
0: जी,
1: ये अलग है। अगर एक जो मजदूरी कर रहा है
0: जी,
1: जो रोज कमाता है रोज खाता है, उनके हिसाब से अगर देखिए, मान ले एक मजदूर बिल्डिंग बना रहा है
0: जी,
1: या कुछ कर रहा है, मेरे
0: दिहाड़ी मजदूर जिसको बोले,
1: दिहाड़ी मजदूर जिनको कहा जाए, उनकी जिम्मेदारी जो है परिवार के प्रति बहुत ज्यादा होती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वही एकमात्र शारीरिक रूप से खट के कमा के घर को खिलाने वाला होता है,
0: परिवार का एकलौता व्यक्ति,
1: एकलौता व्यक्ति, तो वो उसकी कमाई कितनी होगी सर प्रतिदिन की? 300-400-500 500 के आसपास महीने का, 15,000। तो वो व्यक्ति अपने आप को और अपने परिवार को किस तरह से, कितना पैसा जमा करके LIC में अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है सर?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है मैडम
1: जी।
0: मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा
1: जी जी जी,
0: कि एक दिहाड़ी मजदूर की अगर हम लोग मान के चले तो वो जो भी कमाए 300 कमाए 400 कमाए, आप एक बात बताइए कि वो प्रतिदिन अपना परिवार के ऊपर में कितना खर्च करता है?
1: प्रतिदिन मेरे ख्याल से 300 रुपया
0: खर्चा करता
1: होगा।
0: तो उसके पास अगर 400 या 500 कमा रहा तो 100 से 150-200 रुपए बचता है,
1: बच गया सर।
0: हमारे LIC इसके लिए एक छोटा बीमा है जो कि मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा
1: जी,
0: कि बहुत ही LIC के एक कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया पॉलिसी उपलब्ध कराया है LIC ने। इस कहने का अर्थ है कि मासिक 500 से 600 रुपए, क्योंकि हमारे LIC में क्या है ना, एज के ऊपर में थोड़ा सा 50-100 रुपए आगे पीछे हो सकता
1: है,
0: एज के ऊपर में डिपेंड करता है।
1: ठीक है,
0: 18 साल से ऊपर के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए आपका 500 भी होता है तो प्रतिदिन का खर्च कितना हो गया, लगभग सोच लीजिए 10 रुपए से भी कम, 15-20 रुपया,
1: 20 रुपया
0: मान के चलिए। तो 20 रुपया अगर मैडम अगर वो बचत करते हैं तो लगभग उसका परिवार का अगर कुछ नहीं होने से कुछ तो सुरक्षित हो जाएगा। और जब वो अपने वृद्धावस्था की ओर आएगा, सीधी सी बात है हमारा शरीर भी एक मशीन है, एक समय आने पर इसको भी स्टॉप हो जाना है या ब्रेकडाउन होगा,
1: जवाब दे देगा।
0: उस समय ये पैसा अपना आय के अनुसार अगर छोटा भी बचत करता है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा।
1: बिल्कुल, जिस तरह से हमने एक दिहाड़ी मजदूर की बात की सर उदाहरण के लिए
0: जी,
1: अगर आपने 20 रुपए की बात की तो अगर वो 20 रुपए भी हर दिन अगर बचाता है, हर दिन के हिसाब से पड़ रहा है
0: जी जी,
1: आपके हिसाब से यानी कि 20 रुपए के हिसाब से 600 रुपए
0: जी,
1: महीने का 600 रुपए, पर दिन का 600 रुपए नहीं सर,
0: महीने का
1: 600 रुपए। अगर वो व्यक्ति अगर सर 25 साल का हो गया, मान लिया 25 साल का है, मैं हिसाब जानना चाहूंगी
0: जी, जी।
1: कितने

0: सालों तक देना है?
1: देखिए LIC की आजकल तो LIC में बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। व्यक्ति चाहे तो 5 साल के लिए भी प्रीमियम दे के जीवन भर उसका फायदा ले सकता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन मैं जिस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ये सब इसका जो है माइक्रो बचत हो गई है। और एक छोटी छोटी पॉलिसी, 2 पॉलिसी आती है इनकी, तो ये छोटा पॉलिसी जो होता है तो इसको कम से कम 10 साल तो आपको देना ही होगा
0: जी।
1: और 18 साल के उम्र वर्ग के लोग जो है ना इसको कर सकते हैं, 18 से ऊपर वाले जी, 50 तक 55 तक कर सकते हैं।
0: मैंने 18 साल से 50 तक के उम्र वालों के लिए जो आप पॉलिसी बता रहे हैं
1: जी, जी
0: महीने का 500 रुपया
1: जी, 500-600
0: जी, 500-600 उनकी क्षमता के अनुसार
1: जी जी।
0: अगर वो 10 साल भी इस पॉलिसी को देते हैं, है ना, इस पॉलिसी को चलाते हैं
1: जी,
0: उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा सर, एक सहारा उसका हो जाएगा
1: जी।
0: सर जो पैसा उनके हाथ में आता है उससे उनको बहुत सारा सहारा मिलेगा ना सर?
1: बहुत बहुत जी,
0: है ना। ये तो उनके जीते जी की बात कर रहे
1: हैं, जीते जी की बात।
0: अगर उनको भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, घटना हो गई, उनके जो परिवार वाले उनको तो सपोर्ट मिलेगा,
1: पक्का मिलेगा। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि जो जिस तरह की वो बीमा कर रहे हैं उनकी बीमा राशि तत्काल जो है ना ऑफिस के द्वारा या एजेंट के द्वारा उनके घर, माने आजकल तो अकाउंट सिस्टम हो गई है, उनके खाता में भेज दिया जाता है।
0: अच्छा, इसके लिए भी उनको उन्होंने जमा किया था पैसा
1: जी,
0: उनका जो आप जो भी सर्टिफिकेट देते हैं, कागजात देते हैं, उनको सुरक्षित रखना होगा।
1: सुरक्षित, मेरे ख्याल से सुरक्षित रखना ही चाहिए, क्योंकि सुरक्षित अगर नहीं रखेंगे तो उसका डुप्लीकेट इंडमेंट्री बॉन्ड बनाने के लिए फिर दोबारा से उसको जो है ना प्रक्रिया में जाना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: तो प्रक्रिया जाने पे LIC इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेती है, लेकिन कोर्ट कचहरी का थोड़ा सा
0: वहाँ पैसा लग जाता है।
1: हाँ, थोड़ा सा पैसा लग जाता है, क्योंकि एफिडेविट वगैरह ये सब कराना पड़ता है। LIC कुछ खर्चा नहीं लेती है।
0: तो कोई भी पॉलिसी लेने के लिए, LIC का कोई भी पॉलिसी लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब
1: डॉक्यूमेंट
0: कौन से लोग ले सकते हैं और कौन से लोग नहीं ले सकते, कि हर कोई ले सकता ऐसा तो नहीं है, कोई नहीं भी ले सकते?
1: जी जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए इस पे तो सारे स्वस्थ व्यक्ति ले सकते हैं, अगर अस्वस्थ है तो उनका जो है ना वो उनका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह LIC को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: उसके बाद LIC ये निर्णय लेगी ये पॉलिसी होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनका डिजीज क्या है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अलग अलग गंभीर बीमारियां भी रहती है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवस्था रहता है, शरीर का कुछ भी चीज, तो उस वर्तमान उसकी बीमारी क्या है, कितना परसेंटेज है, तो LIC के डॉक्टर है वो उस पर निर्णय करेंगे। हमारा काम एक अभिकर्ता के रूप में हमारा ये मकसद रहता है कि सारे लोगों को जागरूक करें बीमा के प्रति, उसको जो है ना डिविजन लेवल पे उसको भेज दे। डिविजन पे हमारे जो मेडिकल डॉक्टर LIC के द्वारा उपलब्ध है वो उसको जांचते हैं, उस व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं।
0: अच्छा,
1: इसके बाद सरकारी प्रक्रिया होती है, इसके बाद LIC उसको देखती है कि ये व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं।
0: मान लिया सर ऐसा हुआ, पॉलिसी लिए हैं, बीमा कराए हैं
1: जी,
0: कुछ समय देने के बाद नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति में क्या हो?
1: मैं तो आपके रेडियो के माध्यम से सारे श्रोता बंधुओं को ये बताना चाहूंगा
0: जी,
1: इस तरह का एक फलदार वृक्ष है,
0: ठीक है,
1: हम लोग मार्केट से एक फलदार वृक्ष जब खरीद के लाते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, या हम लोग प्राय सोचते हैं कि ये जो वृक्ष लेके जा रहे हैं इसको हम लोग से वृक्षारोपण करेंगे, इसको समय पर पानी देंगे, खाद देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, इसका देख रेख करेंगे, इसके पश्चात वो फल देगा, उद्देश्य वही रहता है
0: जी, जी, जी।
1: तो ये भी सोच लीजिए LIC का जो पॉलिसी ये भी एक फलदार वृक्ष की तरह है, इस समय आने पे, नियत समय आने पे आप उसका फल देगा जरूर,
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए इसको भी हम लोग को निराई गुड़ाई करना पड़ेगा
0: एकदम सर,
1: खाद पानी देना होगा
0: जी, जी।
1: कहने का तात्पर्य है कि प्रीमियम भरना होगा
0: जी।
1: LIC कहती है कि कोई भी पॉलिसी लगभग लगभग 3 से 4 साल चलना चाहिए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अलग अलग टर्म्स पे डिफरेंस आ जाता है, लेकिन 3 से 4 इसीलिए कहते हैं कि LIC एक प्रीमियम एडवांस में लेती है।
0: अच्छा,
1: जिस दिन आपका पॉलिसी हुआ तो आपको पैसा देना होगा
0: जी।
1: फिर नेक्स्ट आर जो है ना वो आप सेकंड बार दे रहे हैं, तो अगर देखे जाए तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, लेकिन LIC उसको 1 ईयर काउंट कर रही है, तो कहने का अर्थ है हम 3 कह रहे हैं तो ये 4 साल हो जाता है, तो इतना तो चलाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका पॉलिसी जो है ना फिर खराब हो जाता है।
0: अच्छा, 4 साल जरूर चलाना चाहिए किसी तरह से,
1: किसी भी तरह से
0: 4 साल जरूर चलाना चाहिए, ताकि आपका पैसा जो आपने डाला है वो सुरक्षित
1: रहे। और अगर जैसे कि मान लीजिए अगर उसको आप उस समय तत्काल अगर सरेंडर नहीं करते हैं, सरेंडर करते हैं तो नेचुरली चीज है कि कुछ ना कुछ पैसा कट के आएगी आपके।
0: अच्छा,
1: और अगर सरेंडर नहीं करते हैं उसकी जो समय सीमा अवधि जो आपने लिया है अच्छा। 10 साल 12 साल 15 साल जिस सर हुए अच्छा। उस अवधि के दौरान अगर नहीं निकालते हैं तो उसका जो भी बोनस वगैरह जो मिलता है वो आप पूर्ण रूप से एलआईसी आपको प्रदान करता है।
0: मैंने फिर भी आपको मिलेगा ही
1: मिलेगा पक्का मिलेगा
0: मिलेगा ही
1: 100%
0: क्या सर ये तो शुरुआत की बात हमने की, क्या ऐसा भी हो सकता है मान लिया किसी का 10 साल का समय है तो उन्होंने 9 साल तो दिया किसी कारणवश 10वां साल जो है वो नहीं पूरा कर पा रहे उस स्थिति में क्या
1: उस अवस्था में भी उनके पैसा मिल जाएगी लेकिन उनको जो जो देखिए हम जो आप हमारे साथ जो एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं
0: जी।
1: एक तरह का जो है ना हमारे बीच में एक इकरारनामा हो जाता है एग्रीमेंट कहता है कि भाई ये मैं पॉलिसी इतना दिन तक चलाऊंगा
0: अच्छा।
1: उसके बीच में मैंने मासिक पे हो या तो तिमाही हो या तो फिर 6 माह हो या तो फिर सालाना वार्षिक तो उस आधार पे मैं पेमेंट करूंगा ये हम लोग के पास एक एग्रीमेंट जो होती है जिसके आधार पे पॉलिसी होती है तो आपने उसमें एग्रीमेंट किया हुआ तो इसको नहीं पूरा कर पाएंगे तो जो आपका बोनस रेट है उस पे थोड़ा सा कम हो सकता
0: कम
1: है
0: हो सकता।
1: कि कुछ परसेंट कम होगा अच्छा। लेकिन पाएंगे तो जरूर और फायदा तो जरूर होगा
0: वो किसी तरह से नहीं चला पाए
1: अगर व्यक्ति के रहते हुए वो बंद कर देता है तो वो पुनः उसी के नाम से ही चलेगा वो ट्रांसफर नहीं होगा उसी के नाम से ही चलेगा अगर व्यक्ति नहीं है तब तो कोई बात नहीं अगर आपका पॉलिसी लेप्स कर चुका है तो एलआईसी ने जो आपका वादा किया है वो तो पूरा नहीं करेगा
0: नहीं हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनमें जानकारी का अभाव है कई ऐसे सवाल आ जाते हैं कई लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको जो इन सारी बातों से अनभिज्ञ रहते जानकारी का अभाव रहता है सर इन सारी समस्याओं से आप लोगों को भी जूझना पड़ता होगा सर
1: प्रतिदिन का काम है
0: जी जी
1: लेकिन मन में एक संतुष्टि रहता है
0: जी।
1: एक हिसाब से देखा जाए तो आपको पता होगा एक मैं मन की बात कहता हूँ किसी व्यक्ति के ना रहने पे उसका परिवार अकेला पड़ जाता
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे सहने सहने उसके परिवार वर्ग के लोग भी उससे दूर चले जाते
0: जी।
1: लेकिन एलआईसी जो अभिकर्ता है वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कि व्यक्ति के नहीं रहने पे सबसे पहले वो आएगा आपके दरवाजे
0: बिल्कुल
1: कि आप जो है ना आपके सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्यूमेंट हो मेरे को दीजिए और मैं उसको उसको सबमिट करके आपको जो मिलना चाहिए वो आपको प्रदान करवाऊं एलआईसी के द्वारा
0: पर आप निर्भर थे वो अगर चले जाए तब भी ये एलआईसी आपके साथ रहेगा
1: रहेगा एक बात और कहना चाहूंगा हमारे एलआईसी में बहुत सारी पॉलिसियां हैं अलग अलग प्रकार की
0: जी।
1: तो व्यक्ति की चॉइस पे निर्भर करता है कि आप वो किस तरह का फायदा लेना चाहे तो फायदा हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है अलग अलग इच्छा होती है कोई कहता है कि हमारे बच्चों को पेंशन मिल जाए मुझे पेंशन मिल जाए किसी को एकमुश्त पैसा चाहिए कोई चाहता है कि नहीं हमारे ना रहने पे दुगुना आजकल तो 3 गुना भी पैसा मिलने लग गया है
0: जी, जी, जी।
1: तो इस तरह की अलग अलग चीजें होती है तो व्यक्ति का कहने मैंने व्यक्तियों का ये है कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपनी आय की क्षमता के अनुसार बीमा पॉलिसी को ले अपने लिए ना सही आपके जो प्यारे हैं आपकी अर्धांगिनी आपके बच्चे उनके लिए कम से कम एक बार जरूर सोचिए कि अगर आप ना रहे भगवान ना करेंगे मैं तो ये नहीं कहूंगा किसी तक का किसी को इस तरह का कोई घटना का सम्मुखीन होना पड़े लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है सब ऊपर वाला लिख के या रच के रखा है अगर इस तरह की कोई हो जाती है कम से कम आपके परिवार की जरूरतों को मैंने पूरा करने के लिए आपका परिवार कहीं किसी और के आगे हाथ ना फैलाए
0: हाथ ना
1: आपकी जरूरतें जिस तरह से यथावत चल रही थी थोड़ा कम बेसी हो सकता है पर चलता रहे सुचारू रूप से
0: वो रहेगी सर
1: वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता
0: नहीं हो सकता
1: लेकिन परिवार सबसे बड़ी कहते हैं ना परिवार की जरूरतें दिन प्रतिदिन क्या है ना धीरे धीरे बढ़ते जाती है ये अगर आप बीमा कराते हैं अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये तो एक बैकअप रहेगा ना कि अगर हम रहें जिंदगी के साथ तो बहुत अच्छा अपने बच्चों के साथ उसका आनंद उठाएंगे किसी कारणवश अगर हम ना रहे तब भी हमारे जो प्रियजन है वो इसका आनंद उठाए मनुष्य के जीवन का और तात्पर्य उद्देश्य क्या है हम अपने लिए तो जी रहे अपने परिवार के लिए जी
0: परिवार के लिए
1: जिंदगी के साथ
0: जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया सर क्या कहना चाहेंगे सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों को एलआईसी के बारे में बीमा के बारे
1: मैंने मेरे तरफ से श्रोता बंधुओं को एक ही मैसेज रहेगा कि आप ठंडे दिल से एक बार सोच के देखें कि आपके ऊपर में आपके परिवार के कितने लोग निर्भर हैं
0: आज आपसे बात करने का सर सबसे अच्छा इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके बात काट के कि हम उस स्तर के लोगों के लिए बात कर रहे हैं
1: जी।
0: जो प्रतिदिन मेहनत करते हैं और प्रतिदिन कमाते हैं खाते हैं बड़े लोग बड़े बड़े लोगों के लिए एलआईसी लेना पैसा जमा करना पूंजी रखना ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी,
0: लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग जो प्रतिदिन कमा के घर चलाते हैं उनके लिए ये आप क्या कहना चाहेंगे सर
1: मैं उसी पे आ रहा हूँ
0: जी
1: कि मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बार आप ठंडे दिमाग से जब घर में बैठ के एक बार आप मैंने एक बार सोचें कि आपके ऊपर में निर्भर रहने वाले कितने लोग हैं
0: जी।
1: अगर भगवान न करे उस व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अगर ये अगर आप ठंडे दिमाग से सोच लें और अपने आय की क्षमता के अनुसार अगर आप थोड़ा छोटा, मैं तो अभी बताया 500-600 की बात कर रहा हूँ, ऐसे बात नहीं कि 500-600 ही है, काफी आप तो अनलिमिटेड है, आप जितना भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्या है ना, हमारे जो है ना कम आय वर्ग के लोगों के लिए बात, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। तो आज के जमाने में 500-600 रुपए खर्च करना हमको तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा
0: अमाउंट है। मासिक
1: की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आराम से कर सकते हैं और वो चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि आज आपने एक वृक्ष लगाया, फल देने में समय जरूर लगेगा, लेकिन नियमित अगर इसको खाद पानी देते रहे, मैंने प्रीमियम के रूप में, तो एक समय आएगा ऐसे कि इसकी मिठास आप स्वयं अगर रहे तो उसका भी मिठास आपको चख सकते हैं, अन्यथा आपका परिवार तो चखेगा ही, उसका आनंद लेगा। और कहते हैं ना मैडम कि आज के तारीख में ये जो बच्चे हैं वो काफी स्मार्ट हो गए हैं, ये हमारे आने वाले समय में हमसे सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या रखा,
0: क्या
1: ये पूछेंगे
0: जी।
1: और इसका जवाब अगर आज आप नहीं कर रहे हैं तो ये इसका इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और उस समय आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि LIC भी एक समय सीमा होती है। ऐसे तो देखिए 0 से लेकर 100 ईयर्स के लोग भी पॉलिसी कर सकते हैं LIC पे है, लेकिन सबका कंडीशन अलग अलग है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ेगा। और यहाँ पर हम लोग न्यूनतम वर्ग के लिए कह रहे हैं, तो अगर ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाएगा तो दे नहीं पाएंगे
0: जी।
1: तो अभी उचित समय है, वो कर सकते हैं इसको, एक बार सोच के देखें। हम तो यही कहेंगे कि एक बार LIC को अपना परिवार का जो है ना क्या कहते हैं, LIC को अपने परिवार का सदस्य बनाइए,
0: सदस्य बनाइए।
1: हम कहते हैं कि कभी आपको जो है ना असुविधा नहीं होगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने हमारे कार्यक्रम को, बहुत सारी जानकारी दी। मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे जो साथी श्रोता हैं इस जानकारी से लाभ जरूर लेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: कभी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, नमस्कार।

इस जानकारी के साथ आज का हमारा विविधा का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू रानी को दीजिए विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के स्वरों में। फिल्म है वादा, बोल समीर के और संगीत सतीश कौशिक का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में फिल्म वक्त की आवाज़ का ये गीत। और अब सुनवाते हैं विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में फिल्म याराना का ये गाना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बलमा का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले और नितिन मुकेश की, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ
5: पुलिस
6: में सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा,
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, आवाज़ मुकेश की, बोल इंदीवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, मुकेश के स्वर में गाए इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रस रंजन अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये पहला गीत श्रेया घोषाल के स्वर में, फिल्म का नाम है जहर।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज के स्वर में फिल्म कुर्बान का ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म लैला मजनू का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: सुबह की इस सुनहरी बेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूं आपके साथ अर्चना
1: और मैं हूं विनोद। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक नई सुबह की नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और ढेर सारी सकारात्मकता।
0: तो उठ जाइए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए पूरे उत्साह के साथ। कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और प्रभु स्मरण से हो तो पूरा दिन सुख शांति और ऊर्जा से भर जाता है।
1: सुबह का समय केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने, आत्मा को सुकून देने और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सुंदर समय होता है।
0: जब उगते सूरज की पहली किरण धरती के को रोशन करती है, पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को संगीत से भर देती है और ठंडी हवाएं मन को छूती है, तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें एक नया संदेश दे रही हो कि हर नया दिन नई उम्मीद लेकर आता है।
1: और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोहार रांची में हम हर सुबह कोशिश करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भक्ति, सुकून और अच्छे विचारों के साथ हो, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ईश्वर के नाम भी होने चाहिए, कुछ पल अपने मन की शांति के लिए भी होने चाहिए।
0: तो चाहे आप घर में सुबह की तैयारी कर रहे हो, ऑफिस जाने की जल्दी में हो, पढ़ाई में जुटे हो या फिर चाय की प्याली के साथ इस सुबह का आनंद ले रहे हो, हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ पल आपके मन को पूरी तरह शांति और भक्ति से भर दे।
1: भजन केवल संगीत नहीं होते, ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का सुंदर संगम होते हैं। भजन सुनते सुनते मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है।
0: तो आइए इस पावन सुबह में हम सब मिलकर प्रभु का स्मरण करें, अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए दूर रखें और खुद को भक्ति के रंग में रंग लें।

0: वह कितना सुंदर और मन को शांति देने वाला भजन था। उम्मीद है भक्ति के इन मधुर सुरों ने आपके मन को सुकून और दिन को नई ऊर्जा से भर दिया होगा।
1: बिल्कुल, और अब इसी सुहानी सुबह में आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी जानकारी की ओर। घर से बाहर निकलने से पहले जान लेते हैं रांची और आसपास के इलाकों के मौसम का हाल, ताकि आप दिन और भी आपका दिन जो है और भी बेहतर तरीके से बीते।
0: बिल्कुल, जून का अंतिम सप्ताह अपने साथ मानसून की आहट लेकर आया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से झारखंड में मानसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। रांची सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही, गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं।
1: बिल्कुल, आज ही से मौसम का जो है सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, तो वो तो सक्रिय दिख भी रहा है। अगर तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के समय उमस महसूस हो सकती है, लेकिन बादलों और बारिश के भी कारण मौसम में राहत मिलने की उम्मीद भी है।
0: मौसम पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो राज्य के कई क्षेत्रों में सुबह से हल्के बादल देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बादल घिरेंगे, दोपहर या शाम में हल्की बारिश भी हो सकती है।
1: और ऐसे मौसम में कुछ सावधानियां भी जरूरी है। यदि आपको घर से बाहर निकलना है तो छाता या रेनकोट साथ रखें। गरज चमक के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। और वाहन चलाते समय सड़क पर फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए गति नियंत्रित रखें।
0: बिल्कुल, बारिश का मौसम अपने साथ कई खुशियां लेकर भी आता है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ठंडी हवाएं और हरियाली मन को सुकून देती है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। बाहर का खुला या अस्वच्छ भोजन खाने से बचें, साफ पानी पिएं और भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन लें।
1: बिल्कुल विनोद, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 28 जून यानी आज के दिन रांची में बादलों का डेरा, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना और मौसम में अच्छी राहत मिलने के आसार है। तो मौसम का आनंद ले, लेकिन सतर्कता का भी साथ में बनाए रखे। और चलिए एक खूबसूरत सा गाना अपने श्रोताओं के साथ हम भी सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: विनोद, मौसम की तो बातें हो गई, क्यों ना आज के दिन के इतिहास के विषय में भी कुछ बातें कर ली जाए। आज के दिन क्या क्या घटित हुई है देश दुनिया में, तो बताते हैं कि 28 जून यानी 28 जून का जो इतिहास है उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी है और कुछ बड़ी घटनाएं भी है जो कि बहुत ही खास है। और इस दिन दुनिया भर में और कई अनोखे महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंस की हत्या इसी दिन हुई थी जो पहले विश्व युद्ध का कारण बनी।
1: और अगर 1838 की बात करें तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को आज के ही दिन ताज पहनाया गया था। और 1846 में आज के ही दिन संगीत वाद्य यंत्र सेक्सोफोन को पेटेंट कराया गया था, यानी कि 28 जून को गिटार का आविष्कार हुआ। अगर 1919 की बात करें तो आज के ही दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था।
0: और सन 2004 की बात करें तो अमेरिकी गठबंधन की सेना ने इराक की अंतरिम सरकार को संप्रभुता सौंपी। और 2005 में रूस द्वारा ईरान के लिए 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा हुई थी।
1: और आज के ही दिन राष्ट्रीय बीमा, बिल्कुल राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। बीमा के महत्व को समझने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी पियर्सिंग दिवस शारीरिक गहनों और कला को समर्पित है। ये दिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन काल से चली आ रही शरीर छिदवाने की कला का सम्मान करना।
1: बिल्कुल।
0: और कैप्स लॉक दिवस कंप्यूटर पर केवल बड़े अक्षरों में टाइप नहीं करने के लिए या बार बार कैप्स लॉक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करना भी सिखाता है यह आज का दिन। और साथ ही राष्ट्रीय टेपियोका दिवस यानी कि साबुदाने या साबुदाने से बनी चीजों को खाने का दिन के रूप में मनाया जाता है। आपको साबुदाना पसंद है विनोद?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो अगर देखा जाए तो कई तरह के उसके व्यंजन बनते हैं
0: और बहुत टेस्टी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो आज तो मेरा मन हो ही रहा है कि जाके आज घर में जरूर मैं साबुदाने का कोई ना कोई एक डिश तो बनाऊंगी।
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध हस्तियों के अगर जन्म की बात करें तो आज एलोन मस्क का आज ही के दिन जन्म हुआ था, जो कि प्रसिद्ध टेक कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। 1971 में जन्म हुआ था आज ही के दिन। और शिव प्रसाद गुप्ता जो कि हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ था।
0: बिल्कुल। और 1921 की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का भी जन्म आज ही के दिन हुआ है 1976 ईस्वी में। और भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलू का जन्म भी आज ही के दिन 1995 ईस्वी में हुआ है। तो चलिए एक और खूबसूरत सा गीत अपने श्रोताओं को हम लोग सुनवाते हैं।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ अब धीरे धीरे वक्त आ पहुंचा है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को आज का ये सफर बहुत खूबसूरत लगा होगा और उनके चेहरे पे मुस्कान भी आई होगी, साथ ही नया ऊर्जा भी देकर गया होगा। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर सुबह अपने श्रोताओं के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ प्रेरणादायक लेकर आए।
1: बिल्कुल, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी कुछ पल खुद के लिए निकालना भी बहुत जरूरी होता है। सुबह की ताजी हवा, अपनों की मुस्कान, अच्छे विचार और मधुर संगीत, यही छोटी छोटी बातें जीवन को खूबसूरत बनाती है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को, परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, जिंदगी के हर छोटे पल को खुलकर जीते रहिए।
1: नमस्कार,
0: जोहार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
4: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
5: महात्मा गांधी का कहना है,
6: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना।

0: घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
5: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव

था वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को

धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोग

0: की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।
3: मात्तमेव एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकम् अपरम् आयोजनम् अभवत्, यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 500+ संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटिसंख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः। अस्मिन् मासे अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन चैम्पियनशिप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः अपि अत्यधिका चर्चा जाता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतेन 14+ संख्याकानि पदकानि विजितानि। एतेषु 2+ संख्याकानि स्वर्ण पदकानि अपि सम्मिलितानि। भारतम् अस्याः प्रतियोगितायाः पदक तालिकायां शीर्षस्थाने आसीत्। अहं सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः यच्छामि। सखायः कस्यापि राष्ट्रस्य आत्मा तस्य नागरिकाः भवन्ति। यदा तस्य देशस्य जनाः कञ्चिदपि संकल्पं गृह्णन्ति तदा कापि शक्तिः तान् जनान् स्वलक्ष्यात् विचालयितुं न शक्नोति। राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः एषा शक्तिः भारतस्य सर्वश्रेष्ठ निधित्वेन अस्ति। अथ अस्याः जनसहभागितायाः वयं वारं वारं अनुभवं कुर्मः। सखायः पश्चिमैशिया महाद्वीपे समुत्पन्नाः युद्धस्थितीः समालक्ष्य अहं देशवासिभ्यः किञ्चित् निवेदनं कृतवानासम्। अहम् उक्तवानासम् यत् यावत् पर्यन्तं सम्भवः भवेत् कस्मैचित् कालाय सुवर्णक्रयणम् उपेक्षणीयम्। जनान् उक्तवानासम् यत् विदेशे अवकाशं यापयितुं परिहरन्तु। अहं जनान् कारपूलिङ्ग् इत्येतदर्थं प्रेरितवान्। कृषकान् आग्रहं कृतवान् यत् रसायनमुक्तकृषिकार्यं कुर्यात्। कृषिक्षेत्राणां रक्षार्थं प्राकृतिकोर्वरकानाम् अत्यधिकप्रयोगः भवेत्। सखायः अहं देशस्य प्रत्येकं नागरिकस्य कृतज्ञः अस्मि यत् ते न केवलं मम निवेदनस्य समर्थनं कृतवन्तः अपि तु प्रत्येकदृष्ट्या सहयोगं कुर्वन्ति। नैके परिवाराः मह्यं सन्देशान् प्रेषित्वा स्वानुभवान् उक्तवन्तः। नैके परिवाराः निश्चयं कृतवन्तः यत् गृहस्य विवाहकार्यक्रमेषु सुवर्णक्रयणं न करिष्यन्ति। आवश्यकता भविष्यति चेत् पूर्वस्थितस्य सुवर्णस्य पुनः प्रयोगं कृत्वा नूतनाभूषणानां निर्माणं कारयिष्यन्ति। नैके जनाः सामाजिकान्तर्जालपटलेषु इदमपि लिखितवन्तः यत् ते कथं निर्धारितविदेशयात्राः उपेक्षितवन्तः। सखायः कारपूलिङ्ग् इत्येतदालक्ष्य अपि नैके अनुभवाः प्रेषिताः। ये जनाः प्रतिदिनम् एकस्यामेव देशायां स्ववाहनैः गच्छन्ति स्म ते साम्प्रतं सहैव गच्छन्ति। जनाः यथा सम्भवं बस यानानां मेट्रो यानानां प्रयोगं कुर्वन्ति। अनेन पेट्रोल डीजल इत्येतेषां सञ्चयः भवति। एवमेव देशस्य विभिन्न क्षेत्रेषु प्राकृतिकोर्वरकाणाम् उपयोगवर्धनस्य वार्ताः अपि समागच्छन्ति। सखायः, अहं प्रसन्नः अस्मि यत् वयं भारतीयाः मिलित्वा एतत् वैश्विकसङ्कटं सम्मुखीकुर्मः। मदीयोऽयं

0: नमस्कार बहनों, रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं गृह लक्ष्मी कार्यक्रम को लेकर। मैं महजबीन और हमारे साथ कार्यक्रम में एक और हमारी सखी हैं रानी।
1: बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्रेम भरा नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी, विशेषकर आज क्योंकि आज है रविवार। सभी को कुछ न कुछ काम करने हैं क्योंकि रविवार को किसी की शॉपिंग होती है, किसी का कहीं घूमने का प्लान है, तो किसी का अपनों से मिलने की चाह। आप सबने भी तो आज अपने लिए कुछ न कुछ जरूर सोच रखा होगा, है ना महजबीन?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा रानी तुमने, इससे सप्ताह का सभी को इंतजार रहता है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस दिन नींद भी पूरी होती है और कहीं ना कहीं सपने भी।
0: मिले भी मुझे अगर कोई शाम में फुर्सत की, मैं क्या कहूँ कौन हूँ, मैं सोचूंगा इसके बारे में।
1: हाँ सच में आज हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बारे में ख्याल ही नहीं रहता, हमेशा भाग दौड़ लगी रहती है। लेकिन बहनों जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगी तो जिंदगी भर यही अफसोस होगा कि काश मैंने अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया। बहनों खुद को तरोताजा करने और मानसिक शांति के लिए अपने इस बिजी शेड्यूल से खुद को समय दे बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप चाहें तो अपना सकती हैं। क्यों?
0: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि रानी हमें सबसे पहले सप्ताहांत में खुद को डिजिटल मीडिया से दूर रखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे की, क्या प्लानिंग है, चाहे वो कविता के रूप में आप लिखें, उसे उभारें, कहानी लिखें या फिर कोई नॉवेल पढ़ें या फिर आप में अगर कोई और प्रतिभा है, गुण है तो उसे पहचानने की कोशिश करें और उसे निखारें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और ये भी है ना रानी,
1: हाँ,
0: कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो समाज में एक मैसेज भी जाएगा।
1: बिल्कुल बहनों, जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम अपने काम भी और अच्छे से कर पाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि ये आपकी सेहत और खुशी दोनों के लिए बेहद जरूरी है।
0: और जिंदगी की उलझनों को हम करें बाय बाय और वो काम पर ध्यान दे जहां आपने अपनी पहचान को खो दिया था, यानी उस सप्ताहांत में एक दिन अपने लिए खुद को निखारने के लिए निकालें, चाहे वो किसी रूप में भी हो। अफसोस ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, फुर्सत कहाँ है किसी को किसी का हाल पूछने की।
1: हाँ बहनों, इसलिए तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां देते हैं और कुछ ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं जिनसे मिलकर आप में उत्साह जागे और आप भी उनसे इंस्पायर हों। हमारे कार्यक्रम का यही मकसद रहता है कि आप अपने उन फुर्सत के पल को सप्ताहांत में खोज निकालिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करिए।
0: हाँ और रानी हम यहाँ बातें कर रहे हैं सप्ताहांत में होने वाले बात का, जिस तरह से आपको काम करना है, क्या प्लानिंग करनी है, बहुत सारी बातें हैं और सुकून के लम्हे, तो क्यों ना सुकून एक चीज़ में और भी मिलती है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत जो लेकर आए हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहनों अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
7: हाँ, और बहनों अब समय है आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने का। बदलता फैशन और बदलते जमाने के साथ किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पर बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला और हमारी आज की मेहमान है आस्था किरण, फैशन डिजाइनर। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
8: है सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी पहचान की भी होती है। और जब यही आत्मविश्वास हमारे पहनावे में झलकता है तो वो केवल फैशन नहीं रह जाता, बल्कि हमारी सोच और पहचान का परिचय बन जाता है। समय के साथ हमारी जीवन शैली, पसंद नापसंद और फैशन के मायने लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि बदलते फैशन का हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी सांस्कृतिक पहचान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। बदलता फैशन, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विशेष अतिथि, फैशन डिजाइनर और फैशन एजुकेटर आस्था किरण जी। नमस्कार आस्था किरण जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
9: नमस्कार आपको भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
8: जी आस्था जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फैशन क्या है? क्या फैशन केवल कपड़ों तक सीमित है या इससे कहीं ज्यादा है?
9: ये फैशन के बारे में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज फैशन को लोग समझते हैं कि वो सिर्फ कपड़ों तक सीमित है, पर मेरे विचार से ऐसा नहीं है। फैशन सिर्फ पहनावा ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बोल सकते हैं, व्यक्तित्व बोल सकते हैं, क्योंकि फैशन ये बताता है, ये अवसर देता है कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, या फिर अगर आपको कोई देखे या हमें कोई देखे तो वो समझे कि उसका व्यक्तित्व उसके कपड़ों से, उसके पूरे वेशभूषा से कैसे परिलक्षित हो रही है। संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय फैशन देता है, ना सिर्फ कपड़ों के माध्यम से ही।
8: बिल्कुल, यानी फैशन सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं बल्कि सोच और व्यक्तित्व का भी हिस्सा है।
9: जी बिल्कुल बिल्कुल।
8: अब अगर बदलाव की बात करें तो समय के साथ फैशन में लगातार बदलाव आते रहते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है?
9: जी हाँ, ये फैशन बदलते हुए परिवेश में हमेशा नएपन के साथ आता है। आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस संस्कृति में पले बढ़े होते हैं, हमारी जो आर्थिक स्थितियां होती हैं, जैसे कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई रिच पीपल है, तो सभी लोगों का अपना एक दायरा

होता है और फैशन हर दायरे में अपने हिसाब से फिट होता है। मतलब मेरा कहना ये है कि फैशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम आज क्या पहन रहे या कल क्या पहन रहे, पर इसमें लगातार बदलाव हमने एक्सेप्ट किए, हमने हम

0: हमेशा बना रहता है। बदलाव हमेशा खूबसूरती की तरफ बढ़ता है, ना ही सिर्फ एक स्टैग्नेंट होकर रह जाता है। तो हमेशा नई पीढ़ी कुछ अलग अलग चीजें लेकर आती है और जिसको हम लोग अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है कि फैशन लगातार बदलता रहता है और जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, समय बदलता है तो पसंद और फैशन भी बदलते हैं। लेकिन आज इन बदलावों को तेज करने में एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत की भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया, फिल्में और सेलिब्रिटीज फैशन को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं। क्या इसका असर हमेशा सकारात्मक होता है या कभी कभी लोगों पर दबाव भी बनता है?
0: यकीनन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है। आप देखते होंगे कि कुछ सालों पहले, जैसे आप या मैं, जब हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में होंगे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था, पर आज हर समय सोशल मीडिया में ही लोग बने रहते हैं। फिल्में या सेलिब्रिटीज की जो फैशन होती है, वो जितनी भी चीजें पहनते हैं या जो भी स्टाइलिंग करते हैं, पहले के जमाने में हमारे पास वो कई किताबों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से आते थे। परंतु आज किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अच्छी डिजाइनिंग या स्टाइलिंग की, या कोई अच्छी फिल्म आ गई, या कोई सर सोशल इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर कुछ अच्छा पहन करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके एक क्लिक पे आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। मतलब हमारे बीच, हमारे ऊपर सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रभाव आज के डेट में है कि हर कोई कहीं भी मिलान या इटली में बैठा हुआ जो फैशन ब्लॉगर है या फैशन इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई अच्छा ड्रेस बनाता है तो वो विद इन अ सेकेंड आपको रांची झारखंड में बैठे हुए अपने घर में आपके टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे नजर आने लगता है और आप उससे प्रभावित होकर के अपने फैशन सेंस में, अपने आप में वो बदलाव लाने की कोशिश करने लगते हैं। और आपने सही बोला कि ये सिर्फ सकारात्मक ही नहीं होता है, बहुत बार और ज्यादातर मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद फैशन डिजाइनिंग बैकग्राउंड से रही हूँ और लगातार मैं इन चीजों को देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक दबाव हमेशा इसलिए बना रहता है कि लोगों को हर वक्त चाहते हैं कि नई चीजों के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट हो। वैल्यू ऑफ मनी जो कहते हैं ना, जो किसी भी चीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फैशन की ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात करते हैं या वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टीज में या किसी भी जगह जाना चाहेंगे तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, है ना? और ये रिपीट नहीं करने का एक बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर होता है कि अरे हम लोगों ने तो कल ही वो कपड़ा पहना था, अरे हमने तो फैशन स्टाइल कल ही करी थी, तो हम लोग फिर कल क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर बना रहता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये दबाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका एक बेटर स्वरूप भी है।
1: जी,
0: जितना ज्यादा दबाव होगा या जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतने ज्यादा मार्केट का विस्तार होगा। मतलब क्या कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा व्यापारिक मंच मिल रहा है, जिसमें कि हम लोग फैशन डिजाइनिंग के तरफ या फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सभी लोग स्वरोजगार पे डिपेंड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बड़ा मार्केट भी क्रिएट होता है। तो दोनों ही पक्ष हैं।
1: बिल्कुल, लोग अक्सर हर नया ट्रेंड अपनाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हर ट्रेंड अपनाना सही है या व्यक्ति को अपनी उम्र, सुविधा और व्यक्तित्व के अनुसार चुनाव करना चाहिए?
0: जी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको, फैशन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बराबर और सभी के लिए एक्सेप्टेंस एक समान हो, है ना? बस हमें फैशन की दौड़ में लगे रहने के कारण हम लोग कुछ भी पहनना चाहते हैं जो आज मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, शारीरिक बनावट अलग होती है, और जहां तक मैंने बोला कि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत मैटर करता है, सोसाइटी मैटर करता है, संस्कृति, कल्चर, सभी कुछ मैटर करता है, जिसको देखते हुए ही फैशन को अपनाना चाहिए। यानी कि अपने व्यक्तित्व को समझते हुए, अपने व्यक्तित्व में जिससे निखार आए, उन चीजों को ही अपने फैशन में एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: आजकल सस्टेनेबल फैशन की काफी चर्चा हो रही है, ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों?

0: महसूस की जा रही है?
1: आज आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जाती है। सस्टेनेबल फैशन इससे भी निकल कर आता है कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके के कपड़ों का, इस तरीके के परिधानों का निर्माण करें जो प्राकृतिक हो, है ना, प्राकृतिक मतलब हस्तशिल्प, स्थानीय हस्तशिल्प का उसमें उपयोग हो, जो फैक्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस्ड केमिकल प्रोसीजर के बाद बनाए जाने वाले फैब्रिक्स, कपड़े हो, उन सब से हम लोग बचाव करें। तो सस्टेनेबल फैशन का एक बहुत बड़ा महत्व ये होना चाहिए कि हम जिन भी कपड़ों का उत्पाद करें उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जो भी कपड़े हैं उसको हम लोग रीयूजेबल बनाने वाले होने चाहिए ताकि हम लोग उन कपड़ों को रीयूज करके, न्यू क्रिएट करके फैशन में उपयोग भी करें और साथ ही साथ सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट भी करें। जो हमारा कपड़ा है वो कहीं ना कहीं सिल्क, कॉटन, इन सब चीजों का ही ज्यादा बना हुआ हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो सिल्क और कॉटन के लिए काफी नामी है और आप जानते हैं कि विश्व स्तरीय यहाँ पे इसका उत्पादन होता है और इन सब चीजों को प्रमोट भी हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल फैशन एक बहुत ही अच्छा मार्केट भी क्रिएट करेगा और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी हम लोग बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, और बात जब हमारे देश की पहनावे की हो रही हो तो भारतीय पारंपरिक पहनावे की अपनी अलग पहचान होती है। बदलते फैशन के दौर में इसे कैसे सहेज कर रखा जा सकता है?
1: जी हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि हमारी भारतीय परिधान के विषय में हम लोग हमेशा जागरूक रहें और आने वाला समय भारत का है और भारत का होना है, इसलिए हम लोग हमेशा चाहेंगे कि अपने पारंपरिक परिधानों को, अपने पहनावों को, भारतीय पहचान को बनाए रखें। बदलता हुआ फैशन जरूर हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ है, हम लोग उसको फैशन को अपने साथ एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उन चीजों में मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमें नहीं करना है कि हम अपनी भारतीय पहचान को ही खो दें। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो इतिहास है, या कह सकते हैं कि जो विरासत है, ये सारी भारतीयता को कहीं ना कहीं शोभित करती है ना। हमारा फैशन, हमारा भारतीय फैशन तभी सुंदर लगेगा जब उसमें हम लोग देख सकेंगे कि वो आरामदायक फैशन हो, साथ ही साथ उसकी जो अपनी मर्यादा है, उसका जो अपना लुक है, वो सब भारतीयता को कहीं ना कहीं संबोधित करता हुआ नजर आए। और इन सब चीजों में हम लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेजेस हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, वो हम लोग फैशन के इस दौर में बनाए रखें, बचाए रखें और उस लेगेसी को लेकर के ही हम लोग फैशन वर्ल्ड में आगे बढ़े।
0: बिल्कुल, अब हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं के लिए फैशन और बजट दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे में कम खर्चे में स्टाइलिश और स्मार्ट दिखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: ये तो बात बिल्कुल पते की है। महिलाओं का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि फैशन के दुनिया को या फैशन के मार्केट को हमेशा बनाए रखता है। आपके प्रश्न में ये है कि कम खर्च में और स्टाइलिश और स्मार्ट कैसे दिखें, तो मेरा मानना है कि अगर आप फैशनेबल होना चाहती हैं, स्टाइलिश और स्मार्ट भी दिखना चाहती हैं, साथ ही साथ आपका एक बजट भी होना चाहिए, तो बस सबसे अच्छा यही स्मार्ट विकल्प रहेगा कि मिक्स एंड मैच, हैंडलूम और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और अच्छी फिटिंग पे अच्छा सुथरे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए सबके सामने आए।
0: बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी फैशन को लेकर काफी जागरूक है और उत्सुक भी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते फैशन का युवाओं और महिलाओं के आत्मविश्वास और सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: फैशन का आत्मविश्वास पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम लोग कहीं पे भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन स्थिति में क्या बातें आती हैं, आती हैं कि हमारा पहनावा कैसा हो। जैसे अगर हम लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा प्रोटोकॉल, हमारा जो स्टाइलिंग है वो उस मीटिंग या बैठक के अनुसार हो। अगर हम किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम लोग वहां पे अपने आप को किस तरह से फैशनेबल और स्टाइलिश प्रेजेंट करें। तो जब हम लोग आत्मविश्वास की बात करते हैं तो आत्मविश्वास वहीं से निकल कर आता है कि अगर आपका पहनावा, आपका जो प्रेजेंटेशन का ढंग है वो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है कि नहीं, आपके एज ग्रुप के अनुरूप है कि नहीं, आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन के

0: ग्रुप है कि नहीं, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। और जब आप इन सब चीजों के साथ एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक अपने व्यक्तित्व को कपड़ों के माध्यम से, अपने हेयर स्टाइल, मेकअप, एक्सेसराइजिंग के माध्यम से जब सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा होता है। और आप अपने किसी भी चीज को, चाहे वो आप बात कर रहे हो या कहीं पे आप बैठे हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आएगा। हालांकि बाहरी रूप पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं, क्योंकि बाहरी रूप क्या है कि वो आंतरिक सुंदरता को थोड़ा दबा देता है। परंतु आज के समय में मैं देखती हूँ कि लोग इनर स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करते हैं। मींस आत्मविश्वास के साथ उनकी जो अपनी स्किल्स है, उनकी जो अपनी क्वालिटी है, वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो बाहरी आवरण है उसका एक बहुत अच्छा ब्लेंड करके सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो मेरे ख्याल से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास के साथ सबके सामने आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को और अपने इनर सोल को, दोनों को बहुत अच्छे से समझकर अपने बाहरी पहनावे को या आप जो बाहर से अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं वो, उन सब चीजों को ध्यान में रखें और तब किसी के सामने प्रस्तुत होएं, या सबके सामने आप एज अ फैशनेबल आइकॉन या जो भी आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं उस व्यक्तित्व के अनुसार आप काम करें, तो उससे आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार इनफैक्ट काफी संतुलित नजर आएगा।
1: बिल्कुल, चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें, खासकर युवाओं के लिए भी जो फैशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
0: बहनों के लिए तो और हमारे साथियों के लिए तो मैं कहूंगी कि फैशन को आप लोग जरूर अपनाएं, लेकिन आप अपने मौलिकता को कभी ना खोएं, है ना। आपके आत्मविश्वास, आपकी संस्कृति का सम्मान आप हमेशा करें। ट्रेंड बदलता रहता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड के साथ साथ अपना संस्कार भी बदल दें, है ना। फैशनेबल तो बने रहना चाहिए पर अपने जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए। और दूसरा है कि युवाओं का आपने प्रश्न किया, युवाओं को क्या सलाह देना चाहती हूँ। फैशन को मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज ना करें, उसको एक प्रोफेशन के नजर से भी देखें, प्रोफेशनल क्रिएटिव करियर के रूप में भी देख सकते हैं। और उनकी जो रुचि और क्षमता है उसको भी पहचाने। तो आज के दौर में हम लोग कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फैशन डिजाइनिंग का जो क्षेत्र है काफी विस्तृत क्षेत्र है। तो मेरा जो मुख्य संदेश यही है कि फैशन केवल पहनावा ही नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी संस्कृति भी रहेगी। और आज के युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कार्य करने का बहुत बड़ा मौका भी है। तो युवा जो वर्ग है वो फैशन को ना सिर्फ ग्लैमर के रूप में देखें बल्कि एक बहुत बड़े व्यवसाय और आने वाले अपॉर्चुनिटी की तरह देखें।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार आपने हमारे साथ साझा किए। आस्था किरण जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस विषय पर इतनी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप सबों का।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता बदलता फैशन। हमारी आज की मेहमान थी आस्था किरण, जो कि पेशे से फैशन डिजाइनर है, और इनसे हम बातें कर रही थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। तो बहनों, लीजिए सुनिए एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पहनो, चलते चलते हम आपको जानकारी देते हैं कि मेडिटेशन है क्या। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव कम होता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है, रात में गहरी और बेहतर नींद भी आती है, तो हमें चाहिए कि मेडिटेशन की ओर आए।
1: बिल्कुल सही कहा मैं जबीन, नियमित ध्यान से तनाव का जो स्तर होता है ना बहनों, वो कम होता है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या में बहुत राहत मिलती है।
0: हाँ, और ये भी बात है कि आत्म जागरूकता भी जरूरी है, कि विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाना भी होता है, जिससे कि बेवजह गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू पाया जा सकता है। और हाँ बहनों, शारीरिक लाभ तो अनेक है जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। उच्च रक्तचाप नियंत्रित करता है, ध्यान करने से दिल की धड़कन शांत होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर सामान्य करने में मदद मिलती है। हाँ, एक बात और, जो कि अभी अनिद्रा की समस्या है उसे दूर करती है, तो बहनों इस ओर आप जरूर ध्यान दें। तो हम चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और अब दे महजबीन
1: और रानी को जाने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भारत भारती के अंतर्गत आंचलिक अंगिका मैथिली भाषा में। कलाकार है विजय भारती झा एवं साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम लोक रंग में। खड़िया लोकगीत कलाकार हैं बिलियाना डुंगडुंग और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत खड़िया लोकगीत। कलाकार थे बिलियाना डुंगडुंग और साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasana Championship held in Ahmedabad, where India topped the medal tally.
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of an unfortunate death. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byabara in Rajgarh district of Madhya Pradesh who resolved to remove plastic waste scattered around the area. Gradually, this effort expanded and the collected plastic began to be converted into eco bricks. Today, these eco bricks are being used to beautify public spaces. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और युग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चाईबासा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन में संलिप्त लोगों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बालूघाटों की नीलामी समय पर नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: राज्य में जिनकी सरकार, यानी जितनी भी प्रकार के खनिज, वो सब खनिजों की इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। इन 6 वर्षों में 5-6 तो यहाँ आयरन ओर की खदानें जिनको ऑक्शन करना था, इतने

0: गया कि अब तक 14,444 स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 29,84,00,000 रुपए का ऋण दिया जा चुका है। पात्र लाभार्थियों को सांकेतिक ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। महापौर रोशनी खलखो ने योजना को छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की है। मेधा सूची में शामिल 1,941 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में होगी। पहले दिन 150 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके आधार पर आयोग अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत जिले के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ महापौर रोशनी खलखो, विधायक सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और एनएचएम के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि बनाए रखने के लिए हर बच्चे तक खुराक पहुँचना जरूरी है।
1: पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई फिर, ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए। और सदर अस्पताल के माध्यम से बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम कर, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए, कोई भी उससे वंचित न रह जाए।
0: वहीं मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में आरोग्य केंद्रों और हेल्थ पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है।
2: निश्चित इसमें नगर निगम भी भागीदारी निभाएगी और एक एक बूथ पर, एक एक आरोग्य मंदिर पर, एक एक दरवाजे पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को खोज खोज करके पिलाई जाएगी। मैं सारे बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर।
0: देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने नए सदर अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 1488 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में भी 0 से 5 वर्ष तक के 17,765 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लक्ष्य के साथ आज पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दुमका पलाश टोटो योजना की शुरुआत की गई। विधायक बसंत सोरेन ने योजना का लोकार्पण कर सखी मंडल के 21 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे स्वरोजगार से अपनी आय बढ़ा सकें। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सहित आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
3: सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से, इससे कि कृपया अपना ऑडिट जरूर कराएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई कर दें हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए।
0: राजधानी रांची में सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है।

थाईलैंड में 27 से 29 जून तक आयोजित हुई अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ग्रीको रोमन टीम ने 150 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान 171 अंकों के साथ पहले और कजाकिस्तान 167 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रांची के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार ने भारतीय अंडर 15 टीम के कोच के तौर पर तृतीय स्थान विजेता की ट्रॉफी ग्रहण की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और योग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसआरसी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में खमाज में ठुमरी। कलाकार थे सिद्धेश्वरी देवी, तबले पर संगत दे रहे थे चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।
1: जी

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Dhunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल

0: With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
2: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये

0: प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में,

0: विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, देश की सीमाओं पर दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हमारे वीर जवानों के नाम समर्पित इस विशेष प्रस्तुति में मैं आपकी रेडियो सखी अर्चना लेकर आई हूँ मधुर गीतों और अपनत्व भरी बातों की सौगात। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम जय भारती। देश की सरहदों पर डटे हमारे वीर जवान हर मौसम, हर चुनौती और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं। उनके इसी अदम्य साहस और समर्पण को हमारा शत शत नमन है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके जज्बे और हौसले को सलाम करता है।

श्रोताओं, दूर रहकर भी अपनों का प्यार और विश्वास ही हर सैनिक की सबसे बड़ी ताकत बनता है। यही अपनापन हर कठिन घड़ी में नई ऊर्जा देता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश है अगला मधुर गीत।

श्रोताओं, संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह दूरियों को भी करीब ले आता है। उम्मीद है हमारे गीतों की यह महफिल आपके दिन को और भी खुशनुमा बना रही होगी। अब वक्त है अगले गीत का, जो अपने मधुर बोल और सुरीले संगीत से आपकी इस यात्रा को और यादगार बना देगा।

श्रोताओं, एक सैनिक की जिंदगी अनुशासन, साहस और त्याग की मिसाल होती है और उसकी हर सुबह देश के नाम और हर रात देश की सुरक्षा के नाम होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन इस देश की सुरक्षा के लिए होम कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, गीतों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपकी मुस्कान और आपका उत्साह ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए बिना किसी देर के सुनते हैं कार्यक्रम का अगला शानदार गीत और संगीत के इन खूबसूरत पलों का आनंद लेते हैं।

तो कार्यक्रम जय भारती में आज के लिए इतना ही। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए रेडियो सखी अर्चना को विदा। अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपये तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11 लाख परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: जामताड़ा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पोलिंग बूथों, अपने अपने घर में टीवी और मोबाइल ऐप पर लोगों ने सुना और सराहना की। भाजपा के जिला महामंत्री कमलेश मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देशवासियों के लिए प्रेरक और उत्साहवर्धक जानकारियां देते हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के सांसद सेवा कार्यालय सभागार में मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने संवाद के दौरान अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान सांसद ने कहा कि जल्द ही वे खुद टाटा और सीसीएल प्रबंधन का प्रभावित ग्रामीणों के बीच वार्ता कराएंगे ताकि विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक एवं ठोस प्रयास किए जा सकें। बैठक के उपरांत सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक रूप से श्रवण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल से महापौर रोशनी खलको ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार सहित कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस वर्ष झारखंड में लगभग 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता और हरित राज्य की परिकल्पना को बढ़ाना है।
2: हमारी बचपन की छोटी छोटी खुशियां थी, हमारे पिता का आशीर्वाद था, हमारी माता की सीख थी, उससे हम दूर होते गए। तो एक हमारी पहल है कि लोग साइकिल चलाएं, साइकिल को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। साथ ही साथ ये जो महंगाई की मार झेल रहे हैं हम, और जो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते जा रहा है हिंदुस्तान, उससे हम बचे।
0: देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल

लिए रांची धनबाद समेत राज्य के 20 जिलों में आंधी तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज हमारे दिल्ली केंद्र से, तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है हमारे सूत्रधार, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता के लिए प्राणायाम, कम कागजी कार्रवाई ज्यादा सुविधा, नागरिक सेवाएं हुई आसान और परेशानी मुक्त, प्रकृति संरक्षण में हर व्यक्ति की भूमिका विषय पर भी चर्चा होगी। कंपेयर होंगी महिललमा गोल्डन बिलुंग सुषमा एक्का। इस कार्यक्रम की सूत्रधार महिमा गोल्डन बिलुंग और सुषमा एक्का। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:02 पर। आज प्रश्नोत्तरी का विषय है संरक्षित खेती आज की आवश्यकता। इस विषय पर जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर अवनी कुमार सिंह। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:30 से। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे। जिले में आजकल 7:11 पे आप सुन सकेंगे और उसके बाद क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा।

रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकें। इस कार्यक्रम में पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन और विद्वान एनएस कल्याण रमन का मृदंगम वादन। रात्रि 10 बजे से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का ये प्यारा सा गीत।

अभी आप फिल्म अमर प्रेम का गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस गीत से पहले आपने सुना फिल्म जेलर का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म दूरियां का ये प्यारा सा गीत।

दूरियां का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म हकीकत का, ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आजमी की बोल है, संगीत मदन मोहन का।

0: प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सुना। वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 8B5 स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में मन की बात कार्यक्रम को नागरिकों के साथ सुना। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों को जोड़ने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DMRC के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई उसकी स्मार्ट डोर टू डोर यात्रा सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ये सेवा प्रथम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम सूचना तथा निर्बाध टिकटिंग को एकीकृत कर यात्रा को अधिक सुगम, सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल बनाती है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये सुविधा दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो AI पर आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्री अपने घर से गंतव्य तक यात्रा की योजना बना सकते हैं और उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें घर से मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा, मेट्रो यात्रा तथा मेट्रो स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक की यात्रा शामिल है। वहीं यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए केवल एकीकृत किराए का भुगतान करना होता है। UITP का परिचालन उत्कृष्टता अवार्ड उन सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो दैनिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार और प्रभाव का परिचय देती हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा स्थित पीतमपुरा शकूर बस्ती विधानसभा के वेस्ट एनक्लेव और मुस्तफाबाद विधानसभा के महालक्ष्मी विहार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित हुई। ये सम्मेलन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास और जनहितैषी योजनाओं में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित ये यात्रा आज विकसित भारत के संकल्प को जन जन का संकल्प बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रेरणा के साथ विकसित शालीमार बाग के निर्माण का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही बेहतर सड़कें, सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और जनहित के कार्यों के माध्यम से विकास का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी विधानसभा से विधायक पंकज कुमार सिंह ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित क्लीन दिल्ली विद CM स्वच्छता अभियान के दौरान ये घोषणा की। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवनधारा है, साथ ही इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
3: यह नदी हमारी अपनी है, यमुना हमारी माँ स्वरूपा है और इसे हमें गंदा नहीं करना है। जब ये सफाई अभियान यहाँ करते हैं तो इससे हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि अब तक जो हमने किया कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगाने की जरूरत है, यमुना को हम गंदी नहीं कर सकते।
2: उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर यमुना के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और स्वच्छ घाट उसी संकल्प का सजीव प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक

0: मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित ना करें और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पहली जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का एक वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 27 जून 2026 तक 235 विभागों और कार्यालयों के 15,748 अधिकारी और कर्मचारी ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा, जिससे दिल्ली में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से अब यह आसानी से पता चल जाता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ई ऑफिस व्यवस्था को 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित किया है। पहली श्रेणी पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के लिए, दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लिए तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली की छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री और भवाना क्षेत्र से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज चांदपुर गांव में HT11KV विद्युत लाइन स्थानांतरण कार्य और चांदपुर कला के से चांदपुर खुर्द लिंक रोड के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्षेत्र में सुरक्षित और सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, बेहतर संपर्क मार्ग तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और जनहितकारी विकास कार्यों को गति देना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह पिधुड़ी ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जो काम 11 साल में नहीं कर पाई, दिल्ली की भाजपा सरकार ने केवल 11 महीने में ही उसकी योजना बनाकर उसे लागू भी कर दिया। श्री पिधुड़ी ने ये बात आज तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े झुग्गी कैंप इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेज 1 में 66 लाख रुपए की लागत से बने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर का शिलान्यास करते हुए कही। इस जन सुविधा परिसर में कुल 60 सीटें बनाई गई हैं, जिनमें से 30 पुरुषों के लिए और 30 महिलाओं के लिए। मिदुड़ी ने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से इन झुग्गी बस्तियों में वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे वे सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने जाति पंथ और ऊंच नीच से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संत कबीरदास के दोहे और शिक्षाएं समाज को आज भी सही दिशा प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज संत कबीरदास के जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कही।
3: संत कबीरदास जी ने जीवन भर जात पात ऊंच नीच को छोड़ करके प्रेम, प्यार, समानता के भाव से रहने का संदेश दिया। उनके शिष्य हर समाज के थे, हर धर्म के थे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संत कबीर के नाम पर प्रतियोगिताएं और पुरस्कार प्रारंभ करेगी। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में कल्याणपुरी और मंडावली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लगभग 1500 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज उमस भरी गर्मी के साथ तेज धूप से लोगों को दिक्कतें हुई। हालांकि दिन ढलते ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 0112311 0118 0112311 0123717106 और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: आ गया सैलरी? नए झुमके?
6: ना, पहले बचत।
5: पहले झुमके?
6: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या?
6: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
7: RBI कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
10: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
9: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे राष्ट्र के रूप में उसे देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
10: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
9: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से सोने की खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और किसानों से जैविक खेती करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के लिए नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोग की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई। खबरों में बताया गया है कि ये दुर्घटना नैंसी शहर के नजदीक हुई। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के महासचिव शेख नईम कासिम ने लेबनान और इसराइल के बीच हुए नए समझौते को खारिज कर दिया है। एक बयान में कासिम ने समझौते को लेबनान की संप्रभुता का आत्मसमर्पण बताया और दावा किया कि यह समझौता इसराइली और अमरीकी हितों को लेबनान की स्वतंत्रता से ऊपर रखता है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 MHz पर। और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल और समय हो चला है 8:11 और 17 सेकेंड्स और ये वक्त है फिल्मी गानों का। तो बिना किसी देरी के आइए लता मंगेशकर जी की आवाज़ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: जी हाँ, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, गुलजार साहब ने इसे बोल दिए हैं।
1: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू प्रोग्राम स्वर धरोहर, बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। श्रोताओं, एक गीत जिसने देश को एकता के सुर में बांधा, जिसने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की ज्योति जलाई। इस महीने उसी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने की इस गौरवमयी बेला में हम भारत माता को नमन करते हुए शुरू करते हैं उस कार्यक्रम को जो हमारे सुरों, संस्कारों और संस्कृति की अमर धरोहर को जीवंत रखे हुए है।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
1: और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं।
0: श्रोताओं, संगीत केवल धुन नहीं, भावनाओं की भाषा है और भारत के संगीत इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने उस भाषा को नया आकार दिया। एक ऐसे संगीतकार जिसने भारतीय फिल्मों की धुनों को एक अलग पहचान दिलाई और सबके दिलों में जगह बनाई, इस महान व्यक्ति का नाम है अनिल कृष्ण बिस्वास।
1: आज हम उनके संघर्षों, उनके प्रयोगों और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। वे सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वे उस संगीत की पहचान थे जिसे पीढ़ियां नहीं भूल सकती।

0: शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: अनिल कृष्ण बिस्वास का जन्म बारीसाल पूर्वी बंगाल में 7 जुलाई 1914 को हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बचपन से ही वे संगीत, थिएटर और वाद्य यंत्रों, विशेषकर तबला के प्रति आकर्षित थे। बचपन में ही उन्होंने थिएटर में अभिनय करना और संगीत सीखना शुरू कर दिया था।
2: बचपन में मैं सुन सुन के बहुत गाया करता था, सुन सुन के काफी, और नकल भी बहुत कर लिया करता था। जिसको जहाँ जो खूबसूरत चीज सुनी वो नकल करके उड़ा के बैठ के गा लिया करता था। हमारे वहाँ बहुत बड़े उस्ताद माने जाते थे, खान साहब बादल का। उन्होंने सुना कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, और उनके एक शागिर्द की एक चीज उड़ा के मैंने एक जगह में गाया था। उन्होंने जाके शिकायत कर दी कि देखिए साहब, ये अनिल हमारी चीजें चुराता है और गाता फिरता है। तो उन्हें बहुत प्यार से बुलाया, एक रोज मुझे बुलाया, कहने लगे कि आओ बेटा, तुम्हारे गंडे बनते, तुम इतने होनहार लड़का हो और तुम सीख कर गाओगे तो और भी अच्छे हो जाओगे।
1: अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करते समय अनिल बिस्वास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और इस वजह से उनकी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं हो सकी। सन 1930 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे आगे की गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर कलकत्ता चले गए।
3: कोलकाता में शुरुआत में नाटकों के लिए संगीत रचना करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई, फिर रंगमंच से जुड़ गए। वहाँ उन्होंने एक अभिनेता, गायक और सहायक संगीत निर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने यहाँ कई मंच प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय किया। इस समय तक वे ख्याल, ठुमरी और दादरा जैसी गायन शैलियों में पारंगत हो चुके थे। अनिल बिस्वास ने गजलों के बारे में बताते हुए कहा था,
2: चार किस्म से गजलें

0: अनिल दाने हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ भी गीतकार, गायक और संगीतकार के रूप में काम किया। वहाँ कुंदन लाल सहगल और सचिन देव बर्मन भी काम करते थे। बाद में उन्हें प्रसिद्ध कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ काम करने का भी मौका मिला। इससे वे संगीत निर्देशक हिरेन बोस की नजर में आए और उनके ही कहने पर 1934 में बंबई चले गए।
1: जब प्लेबैक सिंगिंग ने भारतीय सिनेमा में अपना कदम रखा ही था, तब अनिल बिस्वास ईस्टर्न आर्ट सिंडिकेट में जुड़े। उन्होंने बाल हत्या और भारत की बेटी के लिए संगीत बनाया। उन्होंने फिल्म धर्म की देवी में बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया, अभिनय किया और गाया भी। 1936 में वे सागर मूवी टोन्स से जुड़ गए। अनिल दाने उस्ताद करीम खां के गायन से प्रेरणा लेकर अपने तरीके से एक गीत की रचना की थी। आइए सुनते हैं वो गीत।

0: इस गाने में आपको वो सरगम याद है,
1: सनी दस सनी द पम गरे सनी द सरग पम गरे ग सरग सरे पम ग गम पद सा पद सर गगन सनी द भरी सनी द पद पम गरे यावत चैन।
0: इस जगह को देखिए अपने तरीके से,

0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन 1937 में महबूब खान की फिल्म जागीरदार ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख संगीतकार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें वतन, अली बाबा और रोटी शामिल हैं। सन 1943 में आई फिल्म किस्मत में भी इन्होंने संगीत दिया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही।
1: 3 साल तक ये फिल्म चलती रही। उस वक्त भाई असल में ये लता, ये रफी, ये लोग थे नहीं, मगर हमारे पास उस वक्त ऐसे बड़े अच्छे कलाकार थे। आमिर बाई कर्नाट के मरहूम जो गुजर गई है, मेरी बहन उनका नाम मिसेस पारुल घोष, वो गाया करती थी। राजकुमारी करके एक आर्टिस्ट हुआ करती थी। मर्दों में उस न्यूथेस्ट साइकिल निकला था। मराठी फिल्मों में से बहुत सारे लोग निकले थे। आमिर भाई ने सारे ही गाने गाए थे। मेरी बहन ने एक गाना गाया था जो फोक म्यूजिक पे था, और दूसरे सारे गाने

0: इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने अभिनय किया था। इस फिल्म का गाना दूर हटो ऐ दुनिया वालों आज भी देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
1: इसी फिल्म का एक और गीत धीरे धीरे आरे बादल भी एक क्लासिक गीत बन गया। अनिल विश्वास ने पार्श्व गायकों जैसे मुकेश और तलत महमूद को भी प्रमुख गीतों को गाने का मौका दिया और लता मंगेशकर के करियर को भी बढ़ावा दिया। लता मंगेशकर ने आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया था कि कैसे अनिल विश्वास ने उन्हें गाने में सही तरीके से सांस लेने की तकनीक सिखाई।
2: मैंने अनिल दा के साथ बहुत गाने गाए हैं और बहुत अच्छी तरह से सिखा दीजिए और कैसे क्या होना चाहिए, किस तरह सांस लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, ताकि माइक में सांस की आवाज ना आए जो आती है लोगों की, तो वो मुझे उन्होंने सिखाया और बैठे रहते थे, एक एक छोटी छोटी बातें समझाते थे, अच्छा लगता था बहुत और प्यार से मेरे साथ बात करते थे जैसे कोई घर का ही हो।
1: सन 1946 में अनिल विश्वास ने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। अपनी पत्नी आशा लता विश्वास के वैरायटी पिक्चर्स के तहत उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। 1960 के दशक में सिनेमा का संगीत तेजी से बदल रहा था और अनिल दा ने संगीत से संन्यास लेने का निर्णय लिया और वे दिल्ली आ गए।
0: दिल्ली में 1963 में अनिल विश्वास ने ऑल इंडिया रेडियो में राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक का पद संभाला। 1975 तक वे आकाशवाणी दिल्ली में सुगम संगीत के प्रमुख निर्माता रहे। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन की पहली प्रमुख टीवी श्रृंखला हम लोग के लिए संगीत तैयार किया और 1991 तक फिल्म प्रभाग के लिए कई वृत्त चित्रों का संगीत रचा। अनिल दा ने सुगम संगीत यानी लाइट म्यूजिक के बारे में क्या बताया था, आइए सुनते हैं।
3: जो लाइट म्यूजिक जो ये नाम इसको दिया गया है, ये आजकल का नाम है। पहले भी हमारे पास आवाम के दिल बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जिसे लाइट म्यूजिक के नाम से हम नहीं पुकारते थे। देहाती यानी फोक म्यूजिक जो है ना, जैसे हमारे स्टेज के म्यूजिक हुआ करते थे, जो हजार थिएटर के जो म्यूजिक है उसमें काफी अच्छा, खास करके मराठी थिएटरों में बहुत अच्छे संगीतकार लोग, जैसे बाल गंधर्व जैसे लोग, वो लोग शास्त्रीय संगीत को लेके इसको आगे बढ़ाते रहे। इसकी शुरुआत असल में जो बोलती फिल्म है इसी के साथ में इसकी इब्तिदा है। देखिए उन दिनों में हमारे पास प्लेबैक के लिए कोई उपाय, हमारे पास कोई साधन नहीं था, लिहाजा जो लोग उस वक्त काम करते थे फिल्मों में और जो लोग पहले से मशहूर हो चुके थे उन्हीं लोग को हीरो हीरोइन का काम करना पड़ता था। असल में ये एक बात उस वक्त जो शुरू हो गई थी कि बहुत सरल करके, बहुत सहल करके इसको तैयार किया जाए और उस पे आवाम जो है ना वो इनके साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया और यहाँ से इब्तिदा है कि फिल्म म्यूजिक मकबूल होने लगा और सबके मन को अच्छा लगने लगा। ये जो चीज है ना, ये तो सुर में या बेसुर में कोई भी आदमी या कोई लड़की से गुनगुना, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, ये कहने के लिए कोई खास लोगों को तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और इसी तरीके से उन लोग को मद्देनजर रखते हुए जब ये संगीत बनाया जाता था तो इसी तरीके से ये मौसिकी जो है ना ये लाइट म्यूजिक के नाम से मशहूर होने लगा।
1: श्रोताओं, करियर के अंत में उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे महेश कौल की सौतेला भाई और मोतीलाल की छोटी छोटी बातें, जिसमें मुकेश का गाना जिंदगी ख्वाब है भी था। 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: 31 मई 2003 को अनिल विश्वास का नई दिल्ली में निधन हो गया।
1: श्रोताओं, अनिल विश्वास की संगीत की धारा हमेशा गूंजती रहेगी, उनका योगदान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।
3: प्रेम नगर में बनाऊंगी घर मैं करके सब सिंगार।
1: श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में आज के लिए रिपीट। श्रोताओं, स्वर धरोहर में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था निशा और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया था अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।
1: यू आर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेलों की दुनिया का तमाम लेखा जोखा लेकर शक्ति सिंह के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
4: नमस्कार नवीन।
3: शक्ति, आज किन किन खेल खबरों पर हमारी नजर रहेगी?
4: नवीन, अगर आज की बात की जाए तो क्रिकेट में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने अपने अहम मुकाबले खेल रही हैं। जहां भारतीय पुरुष टीम इस समय आयरलैंड का सामना कर रही है, वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला जारी है। और नवीन, बैडमिंटन की बात करें तो किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं।
3: और शक्ति, सिर्फ बैडमिंटन के कोर्ट से ही नहीं बल्कि वॉलीबॉल के कोर्ट से भी शानदार जीत की खबर आई है, जहां भारत ने इतिहास रचते हुए 1986 के बाद पहली बार किसी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीत लिया है। और वहीं फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले तय हो गए हैं और आज रात दो मुख्य मुकाबले खेले जाएंगे और इन पर भी हम चर्चा करेंगे।
4: जी बिल्कुल नवीन। और टेनिस के प्रेमियों के लिए भी हमारे पास एक अच्छी खबर है, जहां कल से साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन शुरू होने जा रहा है, जिसके मुख्य मुकाबले कल से खेले जाएंगे और 4 वर्षों के बाद सेरेना विलियम्स वापसी करती हुई कोर्ट पर नजर आएंगी।
3: तो अगले 15 मिनट तक मैं और शक्ति आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया पर, बने रहिए हमारे साथ। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय मुकाबला जारी है और मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का भारत ने फैसला किया है। और इस समय ताजा खबर क्या है
4: नवीन? अगर ताजा स्कोर की बात की जाए तो भारत ने इस समय 19 ओवर और 3 गेंदे हो चुके हैं, 3 गेंदों का खेल बचा है और भारत ने 3 विकेट खोकर के 154 रन बना लिए हैं। और ये इस ग्रुप का और इस पूरे विश्व कप के जो ग्रुप स्टेज है उसका आखिरी मुकाबला है जो खेला जा रहा है,
3: और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी की होगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत स्लो अंदाज में खेल रही है शक्ति।
4: जी नवीन, कहा जा सकता है, लेकिन शायद मन में ऐसा भी होगा कि क्यों ना इस एक सेफ गेम को दिया जाए और 170 तक के टारगेट के करीब टीम नजर आ रही है।
3: जिस तरह से भारतीय टीम ने शुरुआत की थी, मुझे लग रहा था कि सुपर ओवर में भारत तेजी से खेलेगा, लेकिन वहां पे बहुत धीमी शुरुआत हुई और भारत के 2 विकेट ही गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रन गति में कोई तेजी नहीं आई। और अब बात करते हैं बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड के बीच मैच चल रहा है, दूसरा टी20 क्रिकेट मैच है। जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। ताजा समाचार ये है कि 7वां ओवर इस समय चल रहा है, 46 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, लेकिन भारत के 4 विकेट भी जो हैं गिर चुके हैं। और इससे पहले आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए थे।
4: जी बिल्कुल नवीन, और बेहद निर्णायक मुकाबला है भारत के लिए एक हद तक देखा जाए, क्योंकि पहले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था आयरलैंड की टीम से। और इस मैच में अगर देखा जाए, भारतीय टीम की बात की जाए, तो भारत ने प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में बदलाव किए हैं और सुयश शेगड़े और प्रिंस यादव डेब्यू करते नजर आए। प्रिंस यादव ने अपने पहले मैच में आज 3 विकेट हासिल किए हैं नवीन।
3: और प्रिंस यादव राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 140 किलोमीटर की स्पीड है, लेकिन आज पूरे जो खेल प्रेमी थे, यूं कहें कि क्रिकेट प्रेमी थे, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी थे, वो देखना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन थोड़ी निराशा हाथ लगी।
4: कह सकते हैं काफी हद तक निराशा रही होगी, क्योंकि काफी दर्शक मैदान में पहुंचे थे, उम्मीद थी कि पहले मैच में मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन शायद इंतजार और बढ़ गया है। हो सकता है कि इंग्लैंड में डेब्यू करते हुए नजर आए वैभव नवीन।
3: और जिस तरह से शक्ति ने बताया, प्रिंस ने अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट लिए हैं। घरेलू क्रिकेट में वो दिल्ली के लिए खेलते हैं, आईपीएल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका अनुबंध है। और श्रेयस हेगड़े की बात करें तो ऑलराउंडर है, मुंबई के लिए खेलते हैं और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। बहरहाल इन पे हम लगातार नजर रखे हैं क्रिकेट पे कि क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ चलेगा। बहरहाल ताजा समाचार यह है कि 48 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 4 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप की ओर। 2026 फीफा फुटबॉल विश्व कप आज देर रात से नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे। राउंड ऑफ 32 के 16 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला

0: मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच होगा और ये मुकाबला रात 12:30 बजे से लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जाएगा। शक्ति क्या कहती है?
1: नवीन, कह सकते हैं कि वो चरण जहां से जो टीम मैच जीतेगी वो आगे बढ़ेगी और जो टीम हारेगी उसके बैग पैक होंगे और वापस अपने स्वदेश की वापसी होगी। और दक्षिण अफ्रीका आज जो है ग्रुप ए में जिसने 3 मैचों में 4 अंक हासिल किए थे वो एक मुकाबला खेलेगी, जबकि कनाडा भी ग्रुप बी में 3 मैचों में 4 अंकों के साथ यहां पर पहुंची है, अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर थी, तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अब तक इन दोनों टीमों ने कोई भी मैच हारा नहीं है इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो।
0: जी, और शक्ति, फीफा विश्व कप में दोनों ही टीमों के बीच ये अहम मुकाबला है और इससे पहले 2007 में इनके बीच एकमात्र इंटरनेशनल एक फ्रेंडली मैच खेला गया था और इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीत दर्ज की थी।
1: जी बिल्कुल, अगर राउंड ऑफ 32 की बात चल रही है तो हम बताते चलें कि 2 मुकाबले खेले जाने हैं आज, जहां पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच होगा। ये मैच देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं कल रात 10:30 पर ब्राजील और जापान आमने सामने होंगे। तो सुनते हैं दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा और ब्राजील बनाम जापान के मुकाबलों पर ये खास रिपोर्ट।
2: कनाडा ने ग्रुप स्टेज में अपने अभियान की शुरुआत बोस्निया के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से की। दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। हालांकि आखिरी मुकाबले में टीम ने कतर को 6-0 के बड़े अंतर से हराकर नॉकआउट में एंट्री पाई। उधर दक्षिण अफ्रीका को कप्तान और गोलकीपर रॉनवेन विलियम्स से सॉलिड डिफेंस की उम्मीद होगी, जबकि कनाडा के लिए फॉरवर्ड जोनाथन डेविड सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी होंगे। डेविड टूर्नामेंट में अब तक 3 गोल कर चुके हैं। वहीं कल राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में जापान और ब्राजील आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने ग्रुप मैच में 7-7 गोल किए हैं और इस विश्व कप में सबसे दमदार आक्रमण करने वाली टीम है। ब्राजील के 8 में से 7 गोल विनीसियस जूनियर और मैथियस कुन्हा के जोड़ी ने किए हैं। दूसरी ओर जापान एक टीम की तरह खेला है और पूरी तरह किसी एक प्लेयर पर निर्भर नहीं है। जापान अब तक ग्रुप में कोई मैच नहीं हारा है। जापान ने 3 मुकाबले खेले जिसमें उसने 1 में जीत हासिल की और 2 ड्रॉ रहे। कल के मुकाबले में देखना होगा कि लैटिन अमेरिकी टीम ब्राजील या फिर एशियन टीम जापान, इन दोनों में से कौन किस पर भारी रहेगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, अब ग्रुप स्टेज में वो स्टेज आ चुकी है कि जब आपको करो या मरो है। अगर आप जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हारेंगे तो बैक पैक है आपका। इससे पहले आज सुबह बहुत ही शानदार मुकाबले हुए जहां पे खेल रहे थे लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर में एक बार खास उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने आज डलास स्टेडियम में ग्रुप स्टेज मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। और इस मुकाबले में मेसी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में उतरे थे और फ्री किक पर एक उन्होंने शानदार गोल किया था। और शक्ति, इस गोल के साथ ही वो 7 विश्व कप मुकाबलों में लगातार गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये 2022 के कतर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से सिलसिला शुरू हुआ था। मेसी जब भी उतरते हैं कोई रिकॉर्ड उनकी नजर में होता है, गोल्फ कोर्स उनकी नजर में होता है और गेंद हमेशा टीम की जीत की स्क्रिप्ट लिखते हुए नजर आती है। नवीन,
0: और शक्ति, 39 साल के इस मेसी को दूसरे हाफ में जब मैदान में उतारा गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया। तमाम फुटबॉल प्रेमी इस समय मेसी का जादू देख रहे हैं, लेकिन उस जादू को उन्होंने मिस किया था। मुझे याद है जब ग्रुप के मुकाबले हो रहे थे जब उन्होंने पेनल्टी किक मिस किया, बहुत निराश किया था उन्होंने।
1: जी बिल्कुल, थोड़ी निराशा थी लेकिन कह सकते हैं कि उसकी कसर यहां पे पूरी कर दी। सब्स्टिट्यूट बन के आए थे और एक शानदार गोल टीम के लिए।
0: फुटबॉल के मैदान से अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा बैडमिंटन के कोर्ट पर, बात किदांबी श्रीकांत की। और शक्ति, किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और आज सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की युदाई ओकुमोटो को उन्होंने हराया। सुनते हैं प्राची की ये रिपोर्ट।
3: विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने इस साल के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है। 33 वर्षीय श्रीकांत ने चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ओकुमोटो को 1 घंटे 12 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। ओकुमोटो ने 11-17 से पिछड़ने के बाद गेम पॉइंट हासिल किया था, जिसके बाद श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए पहला गेम जीत लिया। इसके बाद ओकुमोटो ने पलटवार किया और दूसरे गेम 21-15 से अपने नाम करते हुए मैच बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक गेम में भी रोमांच बना रहा। श्रीकांत की 10-5 की शुरुआती बढ़त के बाद ओकुमोटो ने स्कोर 12-12 से बराबर किया। मैच के अंतिम क्षणों में श्रीकांत ने सूझबूझ दिखाते हुए गेम 21-19 से अपने नाम किया। अब फाइनल में उनका सामना चीनी ताइपे के सुलियांग से होगा। वहीं 19 वर्षीय रौनक चौहान का शानदार अभियान

0: सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। उन्हें सूली यांग से 21-17 और 21-19 से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का सफर भी सेमीफाइनल में डेनमार्क की क्रिस्टोफरसेन से मिली हार के साथ समाप्त हो गया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बैडमिंटन कोर्ट से चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ। नवीन, क्या खुशखबरी लेकर के आए हैं?
2: वहां से एक शानदार खबर आ रही है कि भारत ने एक बार फिर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी।
1: जी बिल्कुल, भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहरीन पर 3-1 से जीत दर्ज की।
2: और शक्ति, ये इतिहास ही है जब भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है वॉलीबॉल में। हालांकि हम उतने टॉप क्लास प्लेयर या उतने टॉप क्लास टीम नहीं है, लेकिन अब उन तमाम खेलों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां पे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। और जानते हैं, ये भारत ने इस प्रतियोगिता में पिछले 40 वर्षों का पहला पदक है। इससे पहले भारत को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया से हार का सामना करना पड़ा था और भारत ने ग्रुप स्टेज में सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की थी। एक और शानदार खबर हमारे पास आ रही है, भारत ने स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न्स में 2026 विश्व रोइंग कप में इतिहास रच दिया है। लक्ष्य और उज्जीवाल कुमार सिंह की भारतीय जोड़ी ने इस प्रतियोगिता में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। और शक्ति, एक रोमांचक मुकाबला था जिसमें लाइटवेट पुरुष डबल्स स्कल्स फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए हांगकांग और नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ये जीत भारतीय रोइंग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और शक्ति, यहाँ चलते चलते अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि विश्व रोइंग कप इस खेल की प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिताओं में से एक है और विश्व रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब आपको लिए चलते हैं टेनिस की ओर।
1: जी बिल्कुल, टेनिस की बात की जाए, टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक विंबलडन कल से शुरू होने जा रहा है और इस दौरान दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी इस खिताब के लिए लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब के कोर्ट पर जोर आजमाते नजर आएंगे। और इस वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम है जो कि ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन के बाद खेला जा रहा है। नवीन,
2: और इस टूर्नामेंट का एक मुख्य आकर्षण जो है शक्ति, वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स की ग्रैंड स्लैम में वापसी होगी और वहीं लोगों की नजर अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए कोर्ट पर उतर रहे नोवाक जोकोविच पर भी होगी। फ्रेंच ओपन के विजेता अलेक्जेंडर ज़वरेव भी फेवरेट्स की लिस्ट में शुमार हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सेरेना विलियम्स की बात की जाए, 2022 का यूएस ओपन, उसके बाद अब नजर आएंगी इस विंबलडन के लिए कोर्ट पर। और वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन को और ऑस्ट्रेलिया की उभरती खिलाड़ी माया जेंटसेन से उनका मुकाबला होगा। अगर विलियम्स आगे बढ़ती है तो दर्शकों को वो मैच भी देखने को मिल सकता है तीसरे राउंड पर, जहां इगा स्वियातेक के सामने विलियम्स होंगी।
2: तो सुनते हैं सरफिरोजी की रिपोर्ट की क्या कुछ बता रखी है इस बारे में।
3: विंबलडन के लिए मुख्य ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर को मेंस सिंगल्स में एक ही हाफ में रखा गया है। जोकोविच चीन के वु यिबिंग के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना अभियान शुरू करेंगे। उम्मीद है कि दूसरे दौर में उनका सामना स्टेफानोस सित्सिपास या ह्यूगो गैस्टन से होगा। वहीं विश्व नंबर एक और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर अपने टूर्नामेंट की शुरुआत सर्बिया के मियोमीर केकमनोविच के खिलाफ करेंगे। अगर दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि सिनर और जोकोविच के बीच एक जबरदस्त सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्व यूएस ओपन चैंपियन डेनिल मेदवेदेव के रूसी खिलाड़ी के क्वार्टर फाइनल प्रतिद्वंदी होने की संभावना है। मेदवेदेव अपने टूर्नामेंट की शुरुआत साल 2017 के फाइनलिस्ट मारिन सिलिच के खिलाफ करेंगे। मेंस ड्रॉ के दूसरे हाफ में फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज़वेरेव बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। उधर महिला वर्ग के ड्रॉ की बात की जाए तो स्वियातेक अमरीकी टेलर टाउनसेंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना अभियान शुरू करेंगी। ड्रॉ में घरेलू पसंदीदा एम्मा रादुकानू भी शामिल हैं, जो विंबलडन में अपने खिताब का बचाव एंटोनिया रुजिक के खिलाफ शुरू करेंगी। नाओमी ओसाका का सामना एल्सा जैकमो से होगा, जबकि कोको गॉफ के सामने तमारा कोरपांच होंगी। मीरा एंड्रीवा का सामना मैग्डा लिनेट से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
2: शक्ति, अब वक्त बिल्कुल इजाजत हमें नहीं दे रहा है और

0: चलते हम अपने लिसनर्स को बता दें कि भारत ने 171 रन का टारगेट दिया है T20 विश्व कप में महिलाओं के। और आज के इस अंक में बस इतना ही, कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजें sportscan.air@gmail.com। बहरहाल मुझे
1: समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
3: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
2: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
4: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9.

0: set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वजीर आजम मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुवतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इख्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशेल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वजीर आजम मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में यूपीआई का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकत दारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हेरमिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मंशियात की नाजायज तिजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जराइम के तई अपने अहद का इयादा किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की में क्यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वजीर आजम मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वजीर आजम को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क्यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलमु मईशत आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और स्माल आईलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तई उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एहसास को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया जो माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए अहदबंद हैं।

0: contemporary realities, we believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है, जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है.
0: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है.
1: वजीर आजम ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खसूसी एजाज है. इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया. जनाब मोदी मशरकी अफ्रीका के इस जजीरा नुमा मुल्क के तीन रोजा दौरे पर गुजश्ता रोज विक्टोरिया पहुंचे हैं. इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वजरा ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की में कयादत के लिए वजीर आजम मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है. खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया. विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिले तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ्फुज और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है. वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है. जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई. जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: वजीर आजम ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया. उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं. आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया. मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है. सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुस के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास तनूरा में गिरकर तबाह हो गया. इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए. आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी. वाजह रहे कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी. सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे. वजारत ने मजीद कहा कि
2: अदर एंड डेवलप एज पर देयर रिक्वायरमेंट. इंडिया वॉन्ट्स टू बी अ लीड प्लेयर, सो द स्पिरिट ऑफ सागर एंड महासागर नाउ इम्बाइब आर रिलेशनशिप विद द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन. वी हैव हेल्प सेशल्स टू फर्स्ट ज्वाइन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्सों सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया, केंद्र और राज्य का मिला ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान मारे गए थे। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत के तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 85% बुजुर्ग थे। बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 7 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। इससे पहले आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 3 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
3: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement the UPI in Seychelles.
1: Hum digital public infrastructure mein Bharat ke safal anubhavon ko Seychelles ke saath saajha karenge. और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
3: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remained critical to the bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said both India and Seychelles seek a world where development is more inclusive and international institutions reflect contemporary realities, reaffirming their commitment to advancing the interests of the Global South. The Prime Minister said it is a special honour to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honouring him with Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon. Mr. Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the East African island nation. Prime Minister Modi has said that the power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time. Mr. Modi also spoke about preserving human creativity in the age of technology and artificial intelligence. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. In the ICC Women's T20 World Cup, India have set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match at Lord's, London. In reply, Australia were 162 for 3 in 17.5 overs when reports last came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And with that, we end this news bulletin.
4: नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। सऊदी अरब में रास तनूरा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोग मारे गए। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात अमेरिका के कैलिफोर्निया में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबले से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
4: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा।
4: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मीनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी की सेशल्स की जनता का आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, डॉ जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा,

0: क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आज कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान मारे गए थे। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज होर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अरामको ने शुक्रवार को लगभग 4 महीने बाद खाड़ी में स्थित अपने रास तनूरा टर्मिनल पर फिर से कच्चे तेल की लोडिंग शुरू की थी। मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनियां इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात से हो रही है। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के पहले मुकाबले में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब में रास तनूरा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोग मारे गए। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात अमेरिका के कैलिफोर्निया में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबले से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Amrit Bhushan with the world news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. New Delhi rejects

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। प्रोग्राम हर श्रृंगार आपके साथ, मैं विकास, नमस्कार।

जी बाहर तो पता नहीं कि चांद मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा, लेकिन स्टूडियो में बैठकर मैं जरूर मुस्कुरा रहा हूँ। और मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि आज हर सिंगार में बात मैं थोड़ी सी पहेली से शुरू करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे दो पतंगबाजों की, जिन्होंने न सिर्फ कई पतंग साथ उड़ाई बल्कि हमारा और आपका दिल भी उड़ा लिया। तो अब पहेली क्या है? पहेली ये है कि जहां जहां अभी आप मेरी इस बातचीत को सुन रहे हैं, वहां से बैठे बैठे आपको थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपको अंदाजा लगाना है कि कौन थे ये दो पतंगबाज और जिन्होंने साथ में मिलकर पतंगे न सिर्फ उड़ाई बल्कि कहते हैं कि एक दूसरे ने अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाते उड़ाते गाना भी इंजॉय किया, यानी गाते हुए पतंगे उड़ाई। हिंट के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि दोनों ये जो नाम है हिंदी सिनेमा में मशहूर गायक रहे, काफ़ी सम्मानित और हमारे और आपके दिलों में घर करने वाले।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। जी मैं भूला नहीं हूँ, मुझे वो दो नाम बताने हैं जिनके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था। आपको पता है कि ये जो दो नाम मैंने पूछे हैं ना आपसे, वो पार्श्व गायन के महारथी माने जाते हैं, यानी ऐसे प्लेबैक सिंगर जिनके नामों के बिना उस दौर के संगीत को अधूरा माना जा सकता है। और देखें तो असल में ये बहुत बड़े पतंगबाज भी थे। अब आप कहेंगे कि नाम तो बता नहीं रहा, तब से गोल गोल बातें बता रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने शायद अंदाजा भी लगा लिया होगा कि ये दो नाम कौन से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दो नाम थे रफी साहब और मन्ना दा, यानी मन्ना डे। पार्श्व गायन में फेमस होने के बावजूद पतंगबाजी इन दोनों का प्रिय शगल रहा। जी ये दोनों के दोनों एक तरह से एक दूसरे के पड़ोसी थे और अपनी अपनी छतों पर जब भी इन्हें खाली वक्त मिलता तो पतंगबाजी किया करते। यहाँ तक कि मन्ना डे खुद को प्रोफेशनल पतंगबाज मानते और अपनी छत पर पतंग उड़ाते हुए बेबाक अंदाज में गाया करते। कहते हैं कि मन्ना डे को रफी साहब की पतंग काटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आप सीधा प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले हम सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के गीत है, आर डी बर्मन के संगीत है।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम ही पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
0: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in